गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

0: पानी अनमोल है।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम।
2: नमस्कार श्रोताओं, रेडियो फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है विश्व बाघ दिवस पर हमारा खास कार्यक्रम सिमटते जंगलों में बढ़ता बाघों का कुनबा। शहरों, कस्बों, गांवों और बस्ती की आबादी घनी और घनी होती जा रही है और दिनों दिन कम होते जा रहे हैं जंगल। हमारी सरकारें इस बात से चिंतित भी हैं और लगातार जमीन, जंगल और जानवरों को बचाने के अपनी ओर से हर संभव प्रयास भी कर रही हैं।
3: लेकिन ये कोशिशें नाकाफी हैं क्योंकि जंगल मर रहे हैं और लगातार मजबूत होती जा रही है इंसानी ताकत। अब आप कहेंगे कैसे, तो इस बात की गवाही देती हैं हमारी मानव सभ्यता को आगे ले जा रही और सीना ताने खड़ी ये ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें। शहरों में तेजी से विकसित हो रहे मशीनी जाल, कारखानों से निकलता शोर और वायुमंडलों का दम घोटते धूल धुएं के गुबार, आसमान को अपनी रेडिएशन की जद में समेटते जा रहे मोबाइल वाईफाई के नेटवर्क, इन टेलीकॉम टावर्स की बेतरतीब बेहिसाब बढ़ोतरी आसमान से पंछियों को भी निगलती जा रही है। लेकिन हमें हर तरफ दिखाई देता है विकास, विकास और विकास। लेकिन क्या आप जानते हैं ये विकास बस कॉन्क्रीटी विकास है?
2: क्योंकि आज इंसान अपनी आधुनिकता का दिन रात जश्न मना रहा है। इन पहाड़ों, जंगलों, यहाँ तक कि नदियों को मोड़ तोड़ कर या काट कर बनाई सड़कों और पटरियों पर दौड़ती अंधाधुंध मोटरगाड़ियों, रेलगाड़ियों को देखकर खुश होता है। आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देखना अपनी शान समझता है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आसमान में उड़ने वाले खूबसूरत पंछी लगातार आसमां से नदारद होते जा रहे हैं।
3: आज हमारे आसपास हरियाली कम ही दिखाई देती है, जंगल का क्षेत्रफल सिमटता जा रहा है और चारों ओर बस जो दिखाई देता है वो है लगातार हर जद तक फैल रहा कॉन्क्रीटी अंबार।
2: इन सबके बीच अब एक सवाल आता है कि क्या हमसे कुछ छूट रहा है? क्या कुछ ऐसा है जिसे हम भूलते जा रहे हैं? क्या कोई ऐसा जीवन है जिसका हम दमन करके, जिसको नष्ट करके हम अपनी सभ्यता का पालन पोषण कर रहे हैं? कुछ ऐसा जिसको आने वाले भविष्य में हमारी भावी पीढ़ियां सिर्फ किताबों, कहानियों में पढ़ेगी और जानेगी? क्या वाकई जिसे हम पीछे छोड़ रहे हैं या जिनके जीवन के नष्ट होने का कारण हम बन रहे हैं, उनके बिना मानव सभ्यता के भविष्य की कल्पना भी संभव है?
3: तो हाँ, हम लगातार कुदरत का दमन कर रहे हैं, हम नष्ट कर रहे हैं जंगल के जीवन को, कुदरत की उन बेशकीमती नियमतों को जिन्हें हम चाहकर भी दोबारा कभी लौटा नहीं पाएंगे। और कुदरत की उन्हीं बेशकीमती नियमतों में से एक है बाघ, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। जंगलों में लगातार बढ़ रहे इंसानी दखल से दिनों दिन कम होती जा रही इस प्रजाति की सुरक्षा और इनके कुनबे को बढ़ाने की दिशा में दुनिया भर की एजेंसियां, सरकारें और संगठन कई वर्षों से दिन रात प्रयास कर रहे हैं। कोशिशें की जा रही हैं वन्य जीवों को उनका हक लौटाने की। इसी के साथ प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए हैं
2: और प्रोजेक्ट की सफलता सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए और उन तमाम सरकारों, संगठनों और एजेंसियों के लिए गर्व का विषय है जिन्होंने इस दिशा में लगातार प्रयास किए हैं और आज भी बाघों के जीवन को बचाने और इस मुहिम को नित नई सफलता दिलाने की दिशा में अपना प्रशंसनीय योगदान दे रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट टाइगर मिशन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं।
3: कई देशों के द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए मुहिम चलाने के बावजूद कुछ दशक पहले तक बाघों की घटती आबादी चिंता का विषय थी और कई पर्यावरणविदों का मानना था कि यदि बाघों की संख्या घटने की रफ्तार नहीं रुकी तो आने वाले कुछ दशकों में बाघों का नामो निशान भी धरती से मिट जाएगा। कारण, मानव सभ्यता का अत्याधुनिकीकरण और दूसरी ओर इनका अपने लोभ के या मनोरंजन के लिए किया जा रहा शिकार।
2: बाघों की संख्या में गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उनकी विलुप्त होने की चिंताजनक स्थिति से निपटने और बाघ संरक्षण के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर शिखर सम्मेलन के दौरान 29 जुलाई को हर साल विश्व बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस साल यानी 29 जुलाई 2023 को हम 13वां विश्व बाघ दिवस मनाने जा रहे हैं। आज इस पहल की बदौलत दुनिया भर में

0: जाता है, ये बाघ संरक्षण के लिए जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए आयोजित एक वार्षिक उत्सव ही है जो हर साल 29 जुलाई को आयोजित किया जाता है।
1: जंगल में बाघ होने का मतलब है जंगल का अच्छा स्वास्थ्य और शाकाहारी वन्य प्राणियों की प्रचुर उपलब्धता। जहां जंगल अच्छा होगा वहां बाघ होगा और भोजन श्रृंखला के व्यवहार से बाघ और जंगल की स्थिति का पता चलता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यदि इस तरह लगातार जंगल खत्म होते रहे तो बाघों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। जंगलों के कटान और अवैध शिकार के कारण लगातार कम हो रही बाघों की संख्या चिंता का विषय है। इसलिए बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ इनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए भी विश्व बाघ दिवस मनाने का निर्णय एक सही निर्णय है, ये कहना उचित होगा।
0: श्रोताओं, अब बाघ से संबंधित तथ्यों की बात करें तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है और ये पैंथेरा जीनस का सदस्य है। बाघ दलदली अंधेरी भूमि पर रहना पसंद करते हैं। इनकी मौजूदगी साइबेरिया समशीतोष्ण जंगलों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीपीय और सुमात्रा के उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जंगलों तक फैली है।
1: क्या बिल्ली को देखकर कभी आप डरे हैं? नहीं तो एक बार बिल्ली के करीब जाने से पहले भी जरूर सोचिएगा, क्योंकि बिल्ली कोई आम जानवर नहीं, बाघ की ही मौसी है। कहने का आशय, बाघ बिल्ली की ही सबसे बड़ी प्रजाति है।
0: और बाघों की 8 उप प्रजातियों को मान्यता भी दी गई है, जिनमें से 3 हालांकि विलुप्त हो चुकी हैं। और वो प्रजातियां कौन सी हैं? आइए जानते हैं।
1: बंगाल टाइगर्स, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर पाया जाता है। कैस्पियन बाघ, जो मध्य और पश्चिम एशिया के माध्यम से तुर्की में पाया जाता था पर अब ये विलुप्त है।
0: अमूर बाघ, जो रूस और चीन की अमूर नदी क्षेत्र में और उत्तर कोरिया में पाया जाता है। जावन बाघ भी विलुप्त बाघ की प्रजाति है, जो इंडोनेशिया के जावा में पाया जाता था।
1: दक्षिण चीन बाघ नाम से ही पता चलता है ये दक्षिण मध्य चीन में पाया जाता है। पहली दो विलुप्त प्रजातियों की तरह ही बाली बाघ भी विलुप्त है, जो इंडोनेशिया बाली में पाया जाता था।
0: सुमात्रन बाघ इंडोनेशिया सुमात्रा के महाद्वीपों में पाया जाता है। सन 1998 में इसे एक विशिष्ट उप प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। भारत चीनी बाघ महाद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है।
1: यदि भारतीय टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो हमारे भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है, जिसमें नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जबकि महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है।
0: श्रोताओं, बाघ एक अनूठा पशु है जो किसी स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र और उसकी विविधता में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च उपभोक्ता है, या ये कहें कि ये खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर है और एक ऐसा जंगली स्तनपाई जो आबादी को नियंत्रण में रखता है। अब जरा सोचिए, यदि हमारी खाद्य श्रृंखला का शीर्ष उपभोक्ता ही लुप्त हो जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होगा? धरती पर मौजूद जीवों का जीवन परिवर्तित हो जाएगा, या हो सकता है कि उनका अस्तित्व ही संकट में आ जाए। अतः जरूरी है हर नागरिक प्रकृति की सुरक्षा के प्रति सजग और जिम्मेदार बने।
1: और जब बात चल ही रही है तो चलिए बाघों के बारे में कुछ और रोचक तथ्यों से आपको अवगत कराते हैं। बाघ एक बेहद तेज तर्रार, खूबसूरत और मांसाहारी जंगली पशु है। इसका औसत जीवन काल तकरीबन 40 वर्ष तक होता है। बाघ अन्य जंगली पशुओं की तरह शिकार करके ही अपना भोजन करना पसंद करता है। ये ज्यादातर घने जंगल में रहना पसंद करता है। बाघ एक रात में 27 किलो तक मांस का भक्षण कर सकता है। बाघों की प्रजाति में अन्य प्रजातियों की अपेक्षा साइबेरियन टाइगर प्रजाति का बाघ सबसे बड़ा मांसाहारी पशु है। बाघ अपने शिकार की गर्दन मरोड़कर या तोड़कर उसका शिकार करता है।
0: मादा बाघ का गर्भाधारण काल 3.5 माह का होता है और वो एक बार के गर्भ से 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। जन्म के बाद शावकों की आंखें 3 से 4 सप्ताह के बाद खुलती हैं, पर सारे शावक जीवन के संघर्ष से जीत नहीं पाते और कुछ ही शावक जिंदा रह पाते हैं। बाघ के शावक 6 माह की उम्र से शिकार करने का हुनर

0: क्योंकि अंधेरे में बाघों की देखने की क्षमता इंसानों से 6 गुना अधिक होती है। ये शिकार के वक्त हमेशा अपने शिकार के पिछले हिस्से पर ही वार करते हैं, लेकिन अपने शिकार के लिए किए जा रहे 10 प्रयासों में से ये केवल एक ही प्रयास में सफल हो पाते हैं। ये अपने गद्देदार पंजों की वजह से दबे पैर बिना किसी आहट के अपने शिकार पर हमला करते हैं।
1: नर बाघ अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनका अपना एक क्षेत्र होता है। वो लगातार अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए दूसरे बाघों से संघर्ष करते हैं। कई बार आपसी संघर्ष से ये घायल भी हो जाते हैं या इनकी मृत्यु तक हो जाती है। ये अपने क्षेत्र को चिन्हित कर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पेड़ों पर अपने पंजों के निशान बना देते हैं या पेड़ों पर अपनी सुगंध छोड़ देते हैं। इनकी अपनी एक अलग गंध होती है और उस गंध या चिन्ह से अन्य बाघ उनके क्षेत्र से दूर ही रहते हैं।
0: अब आप कहेंगे, भला ऐसे कैसे संभव है? तो मैं आपको बता दूं कि हर जीव को बनाने के लिए प्रकृति की अपनी अनूठी कलाकारी है। जिस तरह हर इंसान की उंगलियों की छाप या फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही बाघों के शरीर की धारियां हर बाघ पर अलग होती हैं। किसी अन्य बाघ से मेल नहीं खाती। बाघ की गर्जन 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है और तो और इनको तैराकी में भी महारत हासिल होती है। ये पानी में आसानी से लंबी दूरी तैर कर पार कर लेता है।
1: बाघों का अधिकतर शिकार इसकी खाल, पंजों, दांतों के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी काला बाजारी भी की जाती है। बाघों के अंगों की कीमत सोने के भाव से भी कई गुना कीमती होती है। इसके अस्तित्व की बात की जाए तो अब तक का मिला सबसे पुराना बाघ जीवाश्म 2 मिलियन वर्ष पुराना है।
0: है ना ये रोचक तथ्य? हो सकता है इनमें से कई तथ्यों से आप पहले से परिचित हों। खैर, अब बात बाघ संरक्षण के उद्देश्य की, जो कि मात्र इस खूबसूरत जानवर को बचाना नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व और भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका जीवन इस बात को सुनिश्चित करने में सहयोगी है कि हम अधिक समय तक जीवित रहें, क्योंकि संरक्षण के परिणाम स्वरूप ही हमें स्वच्छ हवा, पानी, परागण, सही तापमान, विनिमय आदि जैसी पारिस्थितिक सेवाएं प्रकृति से प्राप्त होती रहेंगी।
1: अब आप पूछेंगे कि यदि पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये इतना जरूरी है, तो इसके संरक्षण के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं? तो हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक प्रायोजित योजना शुरू की गई। ये योजना देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करती है।
0: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है और इसको साल 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था।
1: कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स यानी CATS ये विभिन्न मापदंडों का एक सेट है जो बाघ से जुड़े स्थलों को जांचने का मौका देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा।
0: 2023 में भारत में बाघ जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में 200 बाघ बढ़े हैं और 3,167 हो गए हैं। ये वैश्विक गिनती का 3/4 है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने बाघ जनगणना पर स्टेट्स ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट जारी की है। आपको बता दें कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद से ही दुनिया में बाघों की आबादी में तेजी से गिरावट देखी गई थी, जबकि इतिहास में पहली बार है जब बाघों की संख्या में वर्तमान में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है।
1: वर्तमान में विश्व के बाघों की आबादी का 70% सिर्फ भारत में है। साल 2006 से 2018 के बीच मध्य देश में बाघों की संख्या में 6% की वृद्धि देखी गई। और आज 2023 में बाघों की संख्या तेजी से इजाफा कर रही है और अब भारत में बाघों की कुल संख्या 3,167 हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के जिमकॉर्बेट बाघ अभयारण्य में देश में सबसे अधिक बाघों की आबादी पाई गई। वहीं बाघों की संख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर कर्नाटक का नागरहोल टाइगर रिजर्व, तीसरे स्थान पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, साथ ही कांजीरंगा टाइगर रिजर्व है। सबसे अधिक बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश का नंबर वन प्रदेश है। यहाँ बाघों की संख्या देश के अन्य प्रदेशों से अधिक है। वहीं दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड, चौथे और पांचवे पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु है।
0: अब आप कहेंगे कि क्या लाभ इतनी सारी बाघ संरक्षण की योजनाओं का, तो जरा गौर फरमाइए। बाघ संरक्षण की परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों के पारिस्थितिक तंत्र जैसे स्वच्छ जल, भूमि उर्वरता में सुधार देखने को मिले। बाघों की संख्या में वृद्धि से, टाइगर रिजर्वों के बेहतर प्रबंधन से पर्यावरण पर्यटन में इजाफा हुआ और इससे उन लोगों को रोजगार मिला जिनकी पारंपरिक आजीविका संरक्षण परियोजना से प्रभावित हुई थी।
1: और इतना ही नहीं, संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्वों में वृक्षों की संख्या में वृद्धि से पर्यावरण में उत्सर्जित कार्बन में भी कमी दर्ज की गई। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। दरअसल प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा साल 1973 में की गई थी। देश के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी कैलाश सांखला को इस कार्यक्रम का पहला निदेशक भी नियुक्त किया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम के तहत बाघ आबादी वाले राज्यों को बाघों के संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता भी मुहैया कराई जाती है।
0: हम आपको बता दें कि जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था, उस वक्त देश में केवल 9 टाइगर रिजर्व थे। फिर इनकी संख्या में बढ़त होती रही और आज देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। लेकिन बाघों की सुरक्षा की राह इतनी भी आसान नहीं रही है। प्रोजेक्ट टाइगर संरक्षण से जुड़े संबंधितों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उनमें से अवैध शिकार और मानव प्रकृति के बीच का संघर्ष प्रमुख है। दरअसल बाघों का शिकार शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता रहा है। साथ ही बाघों के अंगों का ऊंचे दामों पर व्यवसाय भी बाघों के शिकार की मुख्य वजह रही है। इसके अलावा लगातार मानव जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास, अंधाधुंध जंगलों की कटाई, शहरीकरण और मानवों का बाघों के क्षेत्र में बेरोक टोक कब्जा भी कई चुनौतियां बाघों के संरक्षण के कार्य में बाधा बनता आ रहा है, जिससे बेखौफ वनों में विचरण करने वाले इस जीव को छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रहना पड़ता है।
1: अगर परिस्थिति बदलने की दिशा में लगातार प्रयास न किए गए तो जितनी तेजी से बाघों की संख्या बढ़ रही है, निकट भविष्य में उनकी पुनः कमी का नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। इसीलिए देश में बाघ आबादी के संरक्षण और सुरक्षा के लिए टाइगर रिजर्वों को आपस में जोड़ने के लिए आरक्षित बाघ गलियारों का निर्माण या सड़क और रेल परियोजनाओं के लिए भूमिगत मार्गों का विकल्प अपनाना चाहिए। वन्य क्षेत्रों के निकट किसी भी तरह के औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत के पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के अलावा भी अन्य पहलुओं पर व्यापक जांच की जानी चाहिए।
0: बाघों के संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय रहवासियों का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए जरूरी है कि बाघ संरक्षण योजनाओं से प्रभावित आवासीय स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण या अन्य कारण से अगर किसी की आजीविका प्रभावित होती है तो उन लोगों और समुदायों को उचित मुआवजे और रोजगार उपलब्ध कराने के विकल्प खोजने चाहिए, जिससे व्यक्तियों की वनों पर निर्भरता कम हो सके।
1: और निरंतर बदल रहे प्राकृतिक परिवर्तनों को देखते हुए भी बाघ संरक्षण की परियोजनाओं में निकट भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी बदलाव करते रहना चाहिए। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज के हमारे बाघ संरक्षण के इस विशेष कार्यक्रम सिमटते जंगलों में बढ़ता बाघों का कुनबा को हम यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि इस बाघ दिवस पर आप संकल्प लेंगे प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाकर और हमारे पारिस्थितिक तंत्र को समान बनाए रखने के प्रयासों में जन जागरूक नागरिकता की भूमिका निभाएंगे। तो अब मुझे यानी स्वाति को
0: और मुझे यानी संदीप को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को स्वर दिया संदीप शर्मा और स्वाति गिरी ने। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सभा शाम 5 बजे आरंभ होगी अक्षय निधि कार्यक्रम के साथ। अक्षय निधि कार्यक्रम में आप वैदिक ऋचाओं का पाठ सुनते हैं। शाम 5:10 पर सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम। महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम सुनेंगे शाम 6:00। आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर के जीवन पर आधारित होगा। 6:30 पर कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से आज का विषय होगा गिन्नौरगढ़ भोपाल का गोंड राजवंश। जानकारी देंगी इतिहासविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा। शाम 7:00 कार्यक्रम टेक गुरु और 7:30 पर भारत विभूति कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम गणितज्ञ सर आशुतोष मुखर्जी के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। रात 8:00 देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा और 8:30 पर काव्य गुंजन कार्यक्रम के अंतर्गत हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। रात्रि के 9:00 गुरु पूर्णिमा पर हमारा विशेष कार्यक्रम और 9:30 पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हमारी विशेष प्रस्तुति होगी। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सेवा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। शाम 5:00 हमारी सांध्यकालीन सेवा आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत, लोक संगीत और अन्य सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन गौरव अभ्यंकर का, और इसके बाद प्रस्तुति होगी रघुनंदन पंचीकर के गायन की। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गौरव अभ्यंकर का गायन।
1: गायन का प्रारंभ एक स्वरचित शिव वंदना से करूंगा, जो कि याग रमन राग यमन में एक ताल में निबद्ध है, मध्य लय की रचना है।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम सुनो कहानी में आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दुस्साहस।

लखनऊ के नौबस्ते मोहल्ले में एक मुंशी मैकूलाल मुख्तार रहते थे। बड़े उदार, दयालु और सज्जन पुरुष थे। अपने पेशे में इतने कुशल थे कि ऐसा बिरला ही कोई मुकदमा होता था जिसमें किसी न किसी पक्ष की ओर से वो रखे न जाते हों। साधु संतों से भी उन्हें प्रेम था। उनके सत्संग से उन्होंने कुछ तत्वज्ञान और कुछ गांजे चरस का अभ्यास प्राप्त कर लिया था। रही शराब, तो ये उनकी कुल प्रथा थी। शराब के नशे में वो कानूनी मसौदे खूब लिखते थे। उनकी बुद्धि प्रज्वलित हो जाती थी। गांजे और चरस का प्रभाव उनके ज्ञान पर पड़ता था। दम लगाकर वो वैराग्य और ध्यान में तल्लीन हो जाते थे। मोहल्ले वालों पर उनका बड़ा रोब था, लेकिन ये उनकी कानूनी प्रतिभा का नहीं, उनकी उदार सज्जनता का फल था। मोहल्ले के 51 ग्वाले और कहार उनके आज्ञाकारी थे। 100 काम छोड़कर उनकी खिदमत करते थे। उनकी मध्य जनित उदारता ने सबों को वशीभूत कर लिया था। वो नित्य कचहरी से आते ही अलगू कहार के सामने 2 रुपए फेंक देते थे। कुछ कहने सुनने की जरूरत न थी, अलगू इसका आशय समझता था। शाम को शराब की एक बोतल और कुछ गांजा तथा चरस मुंशी जी के सामने आ जाता था। बस महफिल जम जाती, यार लोग आ पहुंचते। एक ओर मुवक्किलों की कतार बैठती, दूसरी ओर सहवासियों की। वैराग्य और ज्ञान की चर्चा होने लगती।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए विशेष कार्यक्रम भारत भारती। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे हैं हुगली के रहने वाले सुब्रत चटर्जी का सरोदवादन, और उसके बाद प्रस्तुति होगी निमाड़ी लोकगायन की, जिसे प्रस्तुत करेंगे खरगोन के शिव गुप्ता और उनके साथी कलाकार। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं सुब्रत चटर्जी का सरोदवादन।

0: बोलो नर्मदा मैया की जय।
1: एक प्रस्तुत है संत सिंगाजी निमाड़ के, संत निर्गुणी पंथ के, संत के विचारों को निमाड़ी भाषा में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास।
0: कि तुम कवैया हो गम।

0: तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 175 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं इंद्र, छंद है स्कंधो ग्रीवी बृहती, अनुष्टुप और त्रिष्टुप।
3: मत्स्य पाई ते महः, पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः, वृषा ते वृष्ण इंदुर्वाजी सहस्र सातमः। हे अश्वधारक इंद्रदेव, बड़े पात्र के समान आप महान हैं, आनंददायक, हर्षवर्धक, बलवर्धक, शक्तिशाली, असंख्यों दान देने वाले आप सोमरस का पान करते हुए आनंद की अनुभूति करें। आ नस्ते गंतु मत्सरो वृषा मदो वरेण्यः, सहावाम इंद्र सानसिहि प्रतनाशाडमर्त्यः। हे इंद्रदेव, आपके लिए तैयार किया गया बलवर्धक, हर्षदायक, श्रेष्ठ, सामर्थ्य युक्त, पीने योग्य, अविनाशी, शत्रु विजेता, आनंददायी यह सोमरस आपको प्राप्त हो। त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम सहावान्द्यस्यु मव्रतमोषः पात्रम न शोचिषा। हे इंद्रदेव, आप वीर और दानदाता हैं, मनुष्य के मनोरथों को भली प्रकार प्रेरित करें, जैसे अग्निदेव अपनी ज्वाला से पात्र को तपाते हैं, वैसे ही आप सहायक बनकर दुष्टों और मर्यादाहीनों को नष्ट करें। मुषाय सूर्यम कवे चक्रमीशान ओजसा, वह शुष्णाय वधम कुत्सम वातस्याश्वैहि। हे मेधावी इंद्रदेव, आप सबके स्वामी हैं, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए आपने अपनी सामर्थ्य शक्ति के द्वारा सूर्य देव से चक्र शक्ति प्राप्त किया है। आप शुष्ण के संहार के लिए वायु के समान वेगशील अश्वों द्वारा अपने प्रहारक वज्र को कुत्स के समीप पहुंचाएं। शुष्मिन्तमो ही ते मदो द्युम्निन्तम उतक्रतुः, वृत्रघ्ना वरिवो विदा मनसिष्ठा अश्वसातमः। हे इंद्रदेव, आपकी प्रसन्नता सबको शक्ति देने वाली है तथा आपके श्रेष्ठ कर्म प्रचुर अन्न प्रदान करने वाले हैं। अश्वों के दान में प्रख्यात आप हमें वृत्र वध करने वाले तथा ऐश्वर्य संपदा देने वाले शस्त्रों को प्रदान करें। यथा पूर्वेभ्यो जरित्रेभ्य इंद्र मय इवापो न दृश्यते बभूथ तामनुत्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेशं व्रजनं जीरदानुं। हे इंद्रदेव, प्राचीन स्तोताओं के लिए आप प्यासे के लिए जल और दुखी के लिए सुख मिलने के समान ही आनंददाता और प्रिय सिद्ध हुए हैं। आपकी सनातन स्तुतियों से हम आपको आमंत्रित करते हैं, जिससे हम अन्न बल और दीर्घायुष्य प्राप्त करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 175 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग ना करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं। उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम शांति गीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

विद्यार सागर तुमी विख्यात भारते करुणार सिंधु तुमी शेई जाने मोने दीन जे दीनेर बंधु उज्जवल जगते हिमाद्रीर हेमकांति अम्लान किरोने माइकल मधुसूदन दत्त की ये पंक्तियां बंगाल पुनर्जागरण के अग्रदूत ईश्वर चंद्र विद्यासागर को समर्पित हैं, जिसमें वो कहते हैं कि तुम विद्या के सागर के रूप में भारत में विख्यात हो, मन तुम्हें करुणा के सिंधु के रूप में जानता है, दीनों के बंधु के रूप में तुमने इस जगत को उज्जवल किया है हिमाद्री की कांति से सज्जित अम्लान किरणों की तरह। सच है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जीवन ऐसे ही धवल प्रकाश से भरा हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर सन 1820 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में हुआ था। ये एक अत्यंत निर्धन परिवार था। उनके पिता का नाम ठाकुरदास बंद्योपाध्याय और माताजी का नाम भगवती देवी था। उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंद्योपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में उनकी प्रतिभा और ज्ञान को देखते हुए विद्यार्थी जीवन में संस्कृत कॉलेज में उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई और इस तरह वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से ही विख्यात हो गए। वो एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, समाज सुधारक, दार्शनिक, लेखक और परोपकारी प्रकृति के इंसान थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अत्यंत मेधावी छात्र थे, लेकिन जीवन में कठिनाइयां बहुत थीं। परिवार विपन्न था, उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। जीवन में घोर संघर्ष के बावजूद ईश्वर चंद्र प्रायः सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान ही प्राप्त किया करते थे। कोलकाता के संस्कृत कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रधान पंडित के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। सन 1846 में संस्कृत कॉलेज में वो सचिव के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने अपने काम को अत्यंत गंभीरता और जिम्मेदारी से लिया। वो कॉलेज के पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहते थे, लेकिन यहां उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनकी सोच प्रगतिवादी और सुलझी हुई थी, इसलिए रूढ़िवादी लोगों का विरोध हमेशा बना रहता था। निराश होकर उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। फिर 1850 में वो दोबारा संस्कृत कॉलेज से जुड़े और सन 1858 तक यहां रहे। प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने कॉलेज के मामलों में अनेक बदलाव किए। पहले केवल ब्राह्मण छात्र ही संस्कृत की शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सभी के लिए दरवाजे खोल दिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नाम मात्र की ट्यूशन फीस शुरू की। उन्होंने पाठ्यक्रम में आमूल चूल परिवर्तन किया और व्याकरण तथा गणित को केवल संस्कृत के माध्यम से पढ़ाने के बजाय इसे बांग्ला और अंग्रेजी के माध्यम से भी पढ़ाना शुरू किया। संस्कृत महाविद्यालय के पारंपरिक विषयों के अलावा भी उन्होंने यहां पाठ्यक्रम को अत्यंत सार्थक विस्तार दिया। वो कहा करते थे कि विद्या अनमोल धन है, इसके आने मात्र से केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण होता है।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्कूलों के सहायक निरीक्षक के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने नादिया, बर्धमान, हुगली और मेदिनीपुर जिलों में 20 से भी अधिक बांग्ला स्कूलों की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिला शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। ये वो समय था जब रूढ़िवादी समाज स्त्री शिक्षा को वर्जित मानता था। ऐसे समय में उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद बालिका विद्यालय खोले। मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सुधार उनका प्रिय विषय था। इसके लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य भी किए और अनेक लेख लिखकर लोगों को जगाया भी। महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए उन्होंने बाल विवाह को समाप्त करने तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस दिशा में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए सरकार को एक याचिका भेजकर इसे कानून बनाने का अनुरोध किया। इस तरह सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। उन्हें इसके कारण कड़े विरोध सहने पड़े, उनके प्राण भी संकट में आए, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से संपन्न कर एक जीवंत और साहसिक उदाहरण प्रस्तुत किया। दरअसल ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर रामकृष्ण परमहंस का बहुत गहरा प्रभाव था, विशेषकर सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। परमहंस जी के विचारों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को सामाजिक सुधारों के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध बनाया, विशेषकर स्त्री शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। दोनों के बीच गहरा प्रेम और सम्मान था। कहीं मतभेद रहे भी तो एक दूसरे के प्रति आदर में कोई कमी नहीं आई। प्रसंग मिलता है कि रामकृष्ण परमहंस ईश्वर चंद्र विद्यासागर से इतना अधिक प्रभावित थे कि वो स्वयं उनसे मिलने भी गए। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें ज्ञान का सागर कहा, उनके कार्यों को सात्विक कर्म कहा, उसे ही पूजा माना। इस तरह विद्यासागर जी की समाज सेवा जैसे उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा ही बन गई।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर की उदारता और दयालु व्यवहार के कारण लोग उन्हें करुणा सागर भी कहते थे। उनके भीतर मानव मात्र के प्रति करुणा का प्रबल भाव था। वो कहा करते थे कि दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो वास्तव में मनुष्य नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपना जीवन बहुत सादगी से व्यतीत करते थे। वो घर पर बुने साधारण सूती वस्त्र धारण किया करते थे जो उनकी माता बुनती थीं। लेकिन दान पुण्य के अपने काम को वो राजा की तरह करते थे। बांग्ला साहित्य में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम सहित विभिन्न संस्कृत ग्रंथों का बांग्ला में अनुवाद किया। इन अमर ग्रंथों को उन्होंने बांग्ला पाठकों तक पहुंचाया। वो बांग्ला गद्य के प्रथम प्रवर्तकों में से एक थे। उन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की, जिनमें से 17 संस्कृत में, 5 अंग्रेजी में तथा शेष बांग्ला भाषा में हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वेताल पंचविंशति, शकुंतला, सीता वनवास, व्याकरण कौमुदी, कामनाख्यानम आदि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पाठ्य पुस्तकें भी लिखीं, जिन्हें देखने पर स्पष्ट होता है कि वो न केवल छात्रों को पढ़ने लिखने का कौशल सिखाना चाहते थे, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि उनमें नैतिक मूल्यों का बीजारोपण भी हो। उन्होंने सदा उदार और खुले विचारों के साथ सोचा। चरितमाला में मध्यकालीन संतों की जीवनी न लिखकर उन्होंने यूरोप के 16 महापुरुषों के बारे में लिखा। बांग्ला वर्णमाला के पुनर्निर्माण का श्रेय भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ही जाता है। उन्होंने बांग्ला भाषा को आधुनिक और सरल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बोर्नो पोरिचॉय नामक पुस्तक लिखी, जो आज भी बांग्ला सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है। इसमें उन्होंने संस्कृत स्वरों को समाप्त कर बांग्ला टाइपोग्राफी को 12 स्वरों और 40 व्यंजनों में तब्दील करते हुए सरल बना दिया। स्वावलंबन, स्वाभिमान, मानवता, अध्ययनशीलता और सादगी उनके जीवन के महामंत्र थे। उन्होंने शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए। वो एक विशाल वटवृक्ष की तरह थे, जिसकी छाया में पीढ़ियां संस्कारित होती हैं। लोगों के स्वार्थी व्यवहार ने उन्हें जब परेशान किया, तो उन्होंने ऐसे लोगों से संबंध विच्छेद ही उचित समझा। अपने जीवन के अंतिम 18 से 20 साल उन्होंने झारखंड के संथाल जनजातीय समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिए। 29 जुलाई 1891 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि लोग आश्चर्य करते हैं कि ईश्वर ने लाखों बंगालियों में कैसे एक मनुष्य को पैदा किया। सबके कल्याण की कामना करने वाले ऐसे महान मनीषी को हमारा शत शत

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। प्रस्तुत है कार्यक्रम मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनका योगदान। समय की एक सुदीर्घ यात्रा तय करते हुए एक देश, एक समाज की अपनी पहचान बनती है। पीढ़ियों की आवाजाही में कुछ निशान बनते हैं, कुछ निशान छूटते हैं, जो किसी सभ्यता, किसी समाज के होने की गवाही देते हैं। धरती के सीने पर मौन खड़े ये महल, किले, दुर्ग, मंदिर या बावड़ियां कितनी कहानी समेटे हैं। इतिहास इन निशानियों को गौर से देखता है, इन साक्ष्यों को टटोलता है, इनके एकांत में बैठ इन कहानियों को सुनता है और फिर वर्तमान पीढ़ी को सुनाता है। इस तरह किसी देश की सभ्यता और संस्कृति से, उसकी रंगत, उसकी महक से हम परिचित होते हैं। और हमारे देश का तो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जितना प्राचीन उतना ही व्यापक। अपने इस कार्यक्रम में हम मध्य भारत के जनजातीय राजवंशों के इतिहास और स्थापत्य कला में उनके योगदान पर चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि मध्य भारत में मुख्य रूप से चार राज्यवंश हुए हैं। गढ़ा मंडला का गोंड राज्य, देवगढ़ का गोंड राज्य, चंद्रपुर का गोंड राज्य और खेरला का गोंड राज्य। इसके अलावा भी अनेक गोंड रियासतें यहाँ रही हैं। अपनी इस कार्यक्रम श्रृंखला की शुरुआत हम गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश से करने जा रहे हैं। गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश में प्रतापी राजा हुए संग्राम शाह और इसी राजवंश में हुई सुप्रसिद्ध वीरांगना रानी दुर्गावती। तो आइए जानते हैं गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश का इतिहास और स्थापत्य कला में उनके योगदान के विषय में। हमारे बीच हैं पुरातत्वविद सुश्री पूजा सक्सेना। आपको पुरातत्व के क्षेत्र में अध्ययन और संरक्षण का 23 वर्षों का लंबा अनुभव है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि धर्मपाल शोधपीठ द्वारा पूजा जी की एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया है, गोंड राजवंशों की स्थापत्य कला, जिसका संपादन किया है प्रोफेसर संतोष कुमार वर्मा ने। नमस्कार पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हम आज गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश की बात करने जा रहे हैं और स्थापत्य कला में उनके योगदान की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप ये बताएं कि जो गोंड राजवंश था गढ़ा मंडला का, उसका उद्भव कैसे हुआ?
2: भारत का इतिहास बहुत विस्तृत है और 12वीं सदी में हम देखते हैं कि एक मोड़ आता है
1: जी।
2: और जब मोहम्मद गौरी के आक्रमण दिल्ली पर होते हैं और विदेशी सत्ता काबिज हो जाती है और धीरे धीरे जो है वहाँ बहुत उथल पुथल चलती है, उसी समय मध्य भारत में जहाँ पर 11वीं-12वीं सदी में बहुत से राजपूतों का शासन था, जैसे परमार, प्रतिहार, कलचुरी या चंदेल, उन स्थानों पर जब 13वीं सदी में इनका शासन समाप्त होता है, उसके बाद अचानक से हमें पूरे मध्य भारत से अर्थ है मध्य प्रदेश और उसके आसपास लगे हुए प्रदेश
1: जी,
2: तो इन क्षेत्रों में हमें गोंड राजवंशों का शासन दिखाई देता है, जिसमें से सबसे प्रमुख रहा गढ़ा मंडला का गोंड राज्य। गढ़ा से अर्थ है जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर
1: जी,
2: नर्मदा के किनारे बसा हुआ। तो उनका सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह है। संग्राम शाह से पहले भी जो उनकी वंशावलियां मिलती हैं उसमें 48 राजाओं का जिक्र आता है।
1: अच्छा,
2: तो उसमें 49वें नंबर पर संग्राम शाह है।
1: हाँ, अच्छा।
2: और गढ़ा मंडला में जो मदन महल है, जबलपुर के पास में जो मदन महल है, वो उनका प्रमुख केंद्र रहा।
1: तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि गढ़ा मंडला में, जैसे कि आपने बताया कि पहले राजपूतों का शासन था, उनका राज्य था, धीरे धीरे वो सारा राज्य समाप्त हुआ और गोंड जो राजवंश है उसकी स्थापना हुई। तो ये स्थापना कैसे हुई, और विशेष रुचि ये जानने में है कि संग्राम शाह जो हैं, जिनको आपने बताया कि वो 49वें अपनी पीढ़ी के राजा थे, तो वो किस तरह से राजा बने?
2: गढ़ा के गोंड राजवंश की स्थापना के संबंध में बहुत सारी जनश्रुतियां हैं, उसमें से एक जनश्रुति मैं आपको सुनाती हूँ।
1: जी जी।
2: कहानी है कि गढ़ा के राजा ने यह घोषणा की कि वह अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह करना चाहते हैं।
1: अच्छा।
2: और सभी लोग नदी के किनारे पर इकट्ठे हों। तो सब लोग इकट्ठे हुए तो वहां पर एक सर्वे पाठक नाम का एक ब्राह्मण भी खड़ा था। तो उसने देखा दूर एक गोंड लड़का खड़ा है, जदुराव। हाँ। उसका बाद में नाम यादव राव भी मिलता है
1: जी।
2: तो जदुराव भी खड़ा था, तो सर्वे पाठक ने कहा कि आ जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। तो जदुराव आकर वहां नदी के किनारे खड़ा हो गया। और जैसा कि शर्त थी कि जिसके सर पर नीलकंठ पक्षी बैठेगा उसी से रत्नावली का विवाह होगा।
1: अच्छा।
2: तो जब नीलकंठ उड़ा तो वो जाकर जदुराव के सर पर बैठ गया।
1: अच्छा।
2: तो जदुराव और रत्नावली की शादी हो गई और बाद में फिर जदुराव गढ़ा का राजा बना।
1: तो ये बहुत ही रोचक सी आपने कहानी बताई। जनजातीय समाज में इस तरह की प्रथाएं होती हैं या इस तरह की शर्तें वो रख लेते हैं कि एक नीलकंठ अगर आपके सर पर आकर बैठेगा तो शादी होगी।
2: इसका मतलब ये है कि जिस पर महादेव की कृपा होगी
1: हाँ,
2: तो वो अगला राजा होगा।
1: अगला राजा होगा, ये भाव रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब गोंड राजवंश की स्थापना होती है। और संग्राम शाह के विषय में आप बताएं कि वो किस तरह से राजा बने।
2: गोंड राजवंश की, गढ़ा के गोंड राजवंश की बहुत सारी हमको वंशावलियाँ मिली हैं, लिखी हुई वंशावलियाँ भी हैं और कहावतों में, कहानियों में भी आती हैं। तो उनसे पता चलता है कि 48 राजा हो चुके थे, उसके बाद 49वें राजा संग्राम शाह थे।
1: हाँ।
2: संग्राम शाह के पिता जो थे अर्जुन दास, वो भी राजा रह चुके थे और उनका लगभग 10 वर्षों का शासन है। तो जब संग्राम शाह शासक बने 1510 में।
1: अच्छा।
2: और उनका शासन काल है 1543 तक।
1: अच्छा।
2: तो शुरू में उनका नाम मिलता है आमणदास, जबलपुर में एक जगह भी है जो उनके नाम पर है।
1: अच्छा।
2: और फिर बाद में 1516 के आसपास आते आते उनका नाम मिलता है संग्राम शाह या संग्राम शाही।
1: अच्छा।
2: तो संभवतः उन्होंने कोई संग्राम जीता होगा इसलिए उनका नाम संग्राम शाही पड़ा।
1: तो ये भी बड़ी रोचक सी बात है कि पहले आमणदास उनका नाम था और संभवतः कोई युद्ध जीता तो संग्राम शाही या संग्राम शाह के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। अच्छा, ये भी पढ़ने में आता है कि उन्होंने सोने का सिक्का चलाया था, तो इस पर आप प्रकाश डालें। बड़ी रोचक बात है कि सोने का सिक्का यानी काफ़ी समृद्धि।
2: जी हाँ। सोने का सिक्का चलाने का अर्थ ही यही है कि वह राज्य बहुत शक्तिशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध है, तभी आप सोने का सिक्का चला पाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो संग्राम शाह के कुछ सोने के सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों से कई सारी जानकारियां मिलती हैं।
1: अच्छा।
2: जैसे सिक्के पर संग्राम शाह अपने आप को पुलस्त्य वंशी लिखते हैं।
1: अच्छा।
2: तो पुलस्त्य ऋषि के गोत्र से जो लोग अपना उद्भव मानते हैं वो लोग अपने आप को पुलस्त्य वंशी कहते हैं। तो संभवतः वो पुलस्त्य वंशी रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: दूसरी बात यह है कि सिक्कों पर एक शेर बना हुआ मिलता है और एक पुत्री।
1: अच्छा।
2: पुत्री मतलब एक ह्यूमन फिगर है, लाइन ड्राइंग रहती है, जो बहुत शुभ माना जाता है, इस क्षेत्र में आज भी बनाई जाती है। और साथ ही उनका नाम मिलता है स्वस्ति श्री संग्राम शाही।
1: अच्छा।
2: ये संस्कृत में है।
1: अच्छा।
2: और खास बात यह है कि यही नाम उसी सिक्के पर तेलुगु में भी मिलता है।
1: तेलुगु में?
2: जी हाँ।
1: अच्छा।
2: दो भाषाओं का उपयोग किया है। तो शुरू के विद्वान ये मानते थे कि गोंडों का उद्भव भारत के दक्षिणी भाग से हुआ है, इसलिए यहाँ पर दो भाषाओं का
1: तेलुगु भाषा का भी प्रयोग सिक्कों पर है।
2: जी हाँ। जी। लेकिन बाद के जो विद्वान हैं जैसे डॉक्टर आर के शर्मा हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। दो राज्यों के बीच जब बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध होते हैं तो लेन देन को आसान बनाने के लिए दो भाषाओं का उपयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल।
2: तो ये भी दिखाता है कि ये आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध होगा।
1: बिल्कुल।
2: और मैं आपको बताऊं कि स्वतंत्रता के कुछ समय बाद ही मदन महल के पास से एक घड़ा निकला था, एक खेत से।
1: अच्छा।
2: तो उसमें बहुत सारे सिक्के निकले थे प्राचीन। तो ये प्राचीन सिक्के विभिन्न राजवंशों के थे, भारत के दूर दूर तक के राजवंशों।
1: अच्छा।
2: के। और ये दिखाता है कि जबलपुर उस समय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा और यहाँ से प्राचीन राजमार्ग निकलता होगा। तो यहाँ पर व्यापारिक संबंध रहे होंगे, तभी यहाँ पर एक साथ बहुत सारे सिक्के
1: अलग अलग जगह
2: अलग अलग जगहों के मिल रहे हैं,
1: वहाँ से मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से मालूम पड़ता है कि समृद्धि थी उस वक्त, ये मालूम पड़ रहा है क्योंकि सोने के सिक्के थे। और जैसा कि आपने बताया कि संस्कृत में उनका नाम लिखा है संग्राम शाह का, तो शिक्षा भी अच्छी मालूम पड़ती है कि शिक्षा की स्थिति भी अच्छी थी। और फिर आपने बताया कि तेलुगु भाषा में भी लिखा है, यानी व्यापारिक संबंध जो थे वो दूर दूर के राज्यों तक भी थे। तो

0: दिखाई देता है और ये
1: जी
0: सभी को आकर्षित करता है। उसका कारण ये है कि ये जो भवन है ये आधा एक गोल चट्टान के ऊपर है और आधा जमीन के ऊपर है।
1: अच्छा
0: हाँ, तो ये सभी को बहुत आकर्षित करता है। ये असल में पुरानी चौकी है।
1: जी
0: जब कलचुरियों का शासन रहा होगा तो क्या है कि जहाँ भी इन राजपूतों का शासन था तो ये लोग वन क्षेत्र में हमेशा जनजातियों के प्रमुखों को नियुक्त करते थे, क्योंकि
1: अच्छा
0: जनजातियों को जंगल का, जीव जंतुओं का बहुत ज्ञान होता है। साथ ही ये लोग सुरक्षा भी करते थे, जो व्यापारी काफिले जाते थे उनकी, तो जनजातियां ही वन क्षेत्र को संभालती थीं। तो ये जो मदन महल है ये भी एक चौकी की तरह रहा होगा, और संभवतः इसका नाम जो पड़ा मदन महल वो मदन शाही के नाम पर पड़ा होगा, क्योंकि जो गोंड राजवंशों की हम वंशावली देखते हैं उसमें एक नाम आता है मदन शाही, जो कि 1116 के आसपास होंगे।
1: जी
0: तो संभवतः वो यहाँ के प्रमुख रहे होंगे इस चौकी
1: जी
0: के,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उनके नाम पर मदन महल पड़ा।
1: आपका कहना यह है कि जो वनांचल थे, जो वन क्षेत्र था
0: जी
1: कलचुरियों के राज में, उसकी रक्षा के लिए ये जनजातीय समाज वहाँ था और मदन शाही के नाम पर मदन महल ये नाम पड़ा है। और वास्तव में जबलपुर के आसपास से आप जब निकलते हैं तो मदन महल की चर्चा होती ही है, लेकिन इस तरह से उसको जोड़कर नहीं देख पाते हम। अच्छा, संग्राम शाह के 52 गढ़ की भी बहुत चर्चा है, तो इस पर भी आप विस्तार से प्रकाश डालें, हम चाहते हैं हमारे श्रोताओं के लिए।
0: एक कहावत है, आमन बुद्ध 52 गढ़ा, यानी कि आमणदास, जैसा कि मैंने कहा संग्राम शाह का नाम था,
1: नाम था।
0: तो संग्राम शाह के 52 गढ़। 52 गढ़, गढ़ यहाँ से मतलब है किला, फोर्ट।
1: अच्छा
0: तो 52, 52 फोर्ट्स जिसके हों वो बहुत शक्तिशाली राजा होगा। तो ये किले दिखाते हैं कि आपकी कितनी अच्छी प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। तो 52 गढ़ उनके पास था। जो संग्राम शाह के अधिकार क्षेत्र था वो बहुत विस्तृत था, उसमें मध्य प्रदेश का कुछ भाग, कुछ महाराष्ट्र का और कुछ छत्तीसगढ़ का आता था।
1: अच्छा
0: तो आज अगर हम इसको जिलों में देखें, मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला, दमोह, बालाघाट, कवर्धा, डिंडोरी, नर्मदापुरम, सिवनी, नरसिंहपुर, पन्ना, सागर, बिलासपुर अब छत्तीसगढ़ में, और नागपुर, ये सब संग्राम शाह के यहाँ पर गढ़ मिलते हैं,
1: किले मिलते
0: किले
1: हैं।
0: मिलते हैं। तो बहुत ही ये दिखाता है कि उनके बहुत स्ट्रांग अधिकार रहा है।
1: बिल्कुल
0: तो इन 52 गढ़ों के नाम भी मिलते हैं, हालांकि उसकी सूची बहुत लंबी है,
1: हाँ हाँ
0: पर उसमें
1: हाँ
0: से जैसे सिंगौरगढ़ है, चौरागढ़ है, गौर झामर, खिमलासा, रहली, राहतगढ़, मड़िया दो, गड़ा कोटा, ये इस तरीके के कुछ बहुत प्रमुख किले उनके रहे।
1: जी। तो आपने सिंगौरगढ़ का नाम लिया तो
0: जी
1: मेरी रुचि उस ओर हुई
0: जी
1: कि हमें मतलब विस्तार से बताइए इस किले के बारे में।
0: सिंगौरगढ़ को सबसे ज्यादा प्रमुखता संग्राम शाह के समय में ही मिली। सिंगौरगढ़ आजकल दमोह जिले में है, मध्य प्रदेश के।
1: जी
0: आज भी यहाँ तक पहुंचना बड़ा दुर्लभ है। शहर से आप 10-15 किलोमीटर अंदर चले जाते हैं, एकदम सुनसान जंगली जंगल में, तब आप
1: अच्छा
0: जाके सिंगौरगढ़ पहुंचते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो ये बड़ा दुर्गम किला रहा होगा। किला एक ऊंची पहाड़ी पर है, फिर चारों तरफ से किले की सुरक्षा दीवारें हैं, लेकिन खास बात क्या है जो गोंडों की सुरक्षा व्यवस्था में होती है, कि इस पहाड़ी के चारों ओर भी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, यानी कि इस पहाड़ी को चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों ने घेरा हुआ है,
1: घेरा हुआ है।
0: और फिर इन पहाड़ियों के बाद एक घना जंगल है। आज भी, आज उसका नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के ऊपर वह है, वीरांगना रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
1: जी
0: यानी कि दुर्ग तक कोई सेना पहुंचना चाहती है तो उसको पहले तो एक घना जंगल पार करना होगा, जिसमें जंगली जानवर भी होंगे, और उसके बाद कई नदी नाले, और उसके बाद ये ऊंची पहाड़ियां जो चारों ओर से घेरी हुई हैं, और इन पहाड़ियों के ऊपर भी फोर्टिफिकेशन वॉल बनाई हुई है, सुरक्षा दीवार बनाई हुई है।
1: अच्छा
0: तो अगर कोई सेना इसको पार भी कर जाती है तो आगे जाके आपको सामना करना पड़ेगा, जो मुख्य पहाड़ी है उसके नीचे एक पश्चिमी ओर बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है, जिसे सिंगौरगढ़ तालाब कहते हैं। तो
1: अच्छा
0: ये तालाब मुख्य द्वार के तक आया करता था, जैसे खाई होती है तो खाई भी पार करनी पड़ेगी, और फिर कहीं जाके आप ऊंची पहाड़ी पर जब चढ़ना शुरू करोगे तो पहला दरवाजा आएगा, जिसको हाथी दरवाजा कहते हैं, फिर एकदम खड़ी चढ़ाई आएगी, उस पर कई सीढ़ियां चढ़ के आप दूसरा दरवाजा अगर पार कर लेते हो, ये सुरक्षा चौकी है, उसको भी अगर आपने पार कर लिया, क्योंकि चारों ओर से दीवार से भी घिरा हुआ है, और तब आप जाके किले के अंदर पहुंचते हो।
1: क्या बात है।
0: तो जब आप किले के अंदर पहुंच जाते हो तो एक विशाल तालाब दिखाई देता है, जो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम टैंक है। ये लगभग 100 मीटर से ज्यादा लंबा और 60 मीटर से ज्यादा चौड़ा और काफी गहरा है।
1: अच्छा
0: तो खास बात क्या है कि इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी,
1: अच्छा,
0: यानी

0: कि किले के लिए जरूरत होती है कुछ चीजों की, पानी, खाना और सेना और हिम्मत। तो पानी खत्म ना हो जाए इसके लिए साल भर, जब बारिश होती थी तो साल भर का पानी टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता था। उसके लिए वहां पर कई सारी नालियां बनी, पक्की नालियां बनी हुई हैं। फिर हम आगे जाते हैं तो हमको रानी महल मिलता है। रानी महल में एक मुख्य हॉल है बीच में, और उसके चारों तरफ गलियारे हैं, कक्ष हैं, ये 2 मंजिला है तो बहुत सुंदर है। उसके आसपास कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं, कलचुरी काल की कुछ मूर्तियां दिखाई देती हैं और कुछ गोंड काल की हैं।
1: तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि क्या चौकस सुरक्षा व्यवस्था, और अगर किले तक पहुंचना है तो कितनी कठिनाइयों के बाद आप पहुंचेंगे, और फिर उतना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी वहां देख पा रहे हैं, जिसकी बात आज की जा रही है। आज हम चर्चा करते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि आप कीजिए पानी बोइए, तो ये उस वक्त कर रहे थे संग्राम शाह के समय में। अच्छा पूजा जी, जबलपुर में ही बाजना मठ भी है, तो हम चाहते हैं कि इसके विषय में भी आप विस्तार से बताएं।
0: जबलपुर में एक टेकरी है यानी कम ऊंची पहाड़ी, उस पर बाजना मठ है। बाजना मठ में बटुक भैरव की एक छोटी सी मूर्ति है।
1: अच्छा,
0: ऐसा माना जाता है कि बाजना मठ का निर्माण संग्राम शाह ने ही किया, और यहाँ तांत्रिक साधना होती थी। ये मठ अच्छा। था इस बाजना मठ में एक कमरा है, कमरे में एक ही प्रवेश द्वार है, खिड़कियां नहीं है, और ऊपर गुंबजाकार छत है, साथ में गलियारा भी रहा होगा जो अब नहीं है। तो मठ जो होते हैं यहाँ आचार्य रहते हैं।
1: अच्छा,
0: और वो आचार्य अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, ग्रंथों की रचना करते हैं। इस तरीके के कार्य मठों में हुआ करते थे, तो यहाँ पर भी हुआ करते होंगे। तो हम देखते हैं कि संग्राम शाह खुद भी संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने खुद रस रत्न माला नामक एक ग्रंथ लिखा है।
1: अच्छा,
0: और उसके आखिरी पन्ने पर उनका नाम भी उन्होंने लिखा है।
1: जी अच्छा अच्छा।
0: तो संग्राम शाह ने बहुत से अन्य विद्वानों को भी प्रश्रय दिया, खासकर इस समय मैथिल ब्राह्मण जो हुआ करते थे, उनका बड़ा बोलवाला था। तो उन्होंने कई मैथिल ब्राह्मणों को जबलपुर में बुलवाया और उनसे काफी ग्रंथों की रचनाएं भी करवाई। तो उसमें एक हुए हैं दामोदर ठाकुर, उन्होंने काफी ग्रंथ लिखे हैं, और एक ग्रंथ लिखा है संग्राम शाही विवेक दीपिका, जो कि संग्राम शाह के ऊपर ही है। और इसके साथ में दूसरे जो बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए उनका नाम है महेश ठाकुर।
1: अच्छा,
0: और उनके भी कई ग्रंथ हैं। और संग्राम शाह की जो पत्नी थी उन्होंने महेश ठाकुर को विष्णुपुर नाम का एक ग्राम दान दिया था।
1: अच्छा,
0: जो उनके योगदान के लिए रहा होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बाजना मठ के विषय में भी बताया और संग्राम शाह जी की सांस्कृतिक साहित्यिक अभिरुचि के विषय में भी बताया कि वो खुद संस्कृत के ज्ञाता थे और बहुत से साहित्यकारों को प्रश्रय भी था उनके राजवंश में। मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनके योगदान, इस श्रृंखला के अंतर्गत गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश पर हमने चर्चा की, संग्राम शाह की चर्चा की, और उनके स्थापत्य में उनके योगदान की भी हमने कुछ बात की है। और ये हमारी श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी, और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि इस कार्यक्रम के अगले भाग में हम चर्चा करेंगे वीरांगना रानी दुर्गावती की। पूजा जी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: तो श्रोताओं, मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनका योगदान, इस श्रृंखला के अंतर्गत गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश पर हमने चर्चा की, संग्राम शाह की चर्चा हुई। बहुत जल्द इस कार्यक्रम के अगले अंक के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम टेक गुरु का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी जी से, जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं भोपाल स्थित सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। टेक गुरु कार्यक्रम के तहत हमने उनसे बात की, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से ये बातचीत।
2: सर, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो लेकिन कुछ हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर,
3: मैं यहाँ वर्तमान में प्रोफेसर हूँ सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल में। और यदि बात करें तो बचपन से ही मैं दृष्टिहीन हूँ, और बाय बर्थ इनफैक्ट। और शुरू में मेरी पढ़ाई जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें हुई। और फिर प्रयास किए कि कैसे, मैंने रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर फिर पढ़ाई हुई और उस टाइम पे किताबें वगैरह मिलती नहीं थी, तो बाद में तो शुरू में तो लोग सुनाते थे पढ़ के, बाद में फिर कैसेट रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर करके अपने लेसन्स तैयारी वगैरह करी। 1989 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट पीएससी के थ्रू, और मैंने सिलेक्शन हुआ उसके बाद में, और मैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बना कॉलेज में। तो 1993 में हम लोगों को पता पड़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक इनोवेशन हुआ है, और उन्होंने कोई स्पीच सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको कंप्यूटर पे लगा के, एक बॉक्स को जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे जो कुछ भी है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कशॉप कराई ब्लाइंड लोगों के लिए, और इस तरह से कंप्यूटर पे फिर मैंने अपना खुद का कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर सीखना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने एक संस्था है यहाँ पे आरुषि करके, तो उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जहाँ हमने ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। तो कंप्यूटर सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अभी तक बच्चे जो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए ऑडियो पर डिपेंडेंट थे या ब्रेल पर डिपेंडेंट थे, ब्रेल में किताबें होती नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको अपने लिख कर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये इट वॉज़ अ बिग रेवोल्यूशन इन दोज डेज कि आप चाहो तो आप अपनी बात कंप्यूटर पर लिख सकते हो और प्रिंट करके अपने बात भेज सकते हो या मेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो ऐसे हम लोगों ने शुरुआत करी टेक्नोलॉजी की।
2: सर, इस तरह से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, आपने पढ़ाई की और इतना आपने सारा अपनी जर्नी हमसे शेयर की, तो वो बीच में सर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से आपका जुड़ाव होता रहा?
3: देखिए, अगर जहाँ तक हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहें तो हम टेक्नोलॉजी को 3-4 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमारे पास में कंप्यूटर पे टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब ये है कि जो जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है स्क्रीन टेक्स्ट, उस वो पूरा स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि जो कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पे अवेलेबल है वो टेक्स्ट में, इन स्पीच में कन्वर्ट कर दे। साथ ही साथ, क्योंकि मान लीजिए उसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि जो आपको छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं वो भी आपको कमांड दे के आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फर्ज कीजिए हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कुछ हमको चीज़ें बोल्ड में करना है, इटैलिक्स में करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर हम एक कमांड देंगे कि उसमें ये फॉन्ट कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका कलर कौन सा है, कि लाइन स्पेसिंग क्या है आपकी, सिंगल स्पेसिंग है कि डबल स्पेसिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में कमांड के माध्यम से स्पीच में मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कंप्यूटर पे कर सकता है। तो एक तो ये टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा जो लोग थोड़ा देख सकते हैं तो उनके लिए मैग्निफिकेशन की फैसिलिटीज़ है या मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, लार्ज फॉन्ट में आ जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कंप्यूटर के आने के बाद में लार्ज प्रिंट की बुक्स निकालना भी बड़ा सरल हो गया है कि अगर आप चाहें तो जो बच्चे कम देख पाते हैं और वो बड़े अक्षर पढ़ सकते हैं तो हम किताबों को लार्ज फॉन्ट में तैयार कर सकते हैं। फिर किताबों को में जो अक्षर लिखे हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस मैग्नीफायर्स आ गए हैं काफ़ी सारे, तो वो मैग्नीफाई कर देते हैं। लो विजन वाले लोगों के लिए एक एडवांटेजेस चीज़ हो जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं तो कंप्यूटर में अगर लगा दिया तो जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे वो ब्रेल में सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेल डिस्प्ले कहलाता है। और उसमें ब्रेल डिस्प्ले के का अगर हम आप बताएं तो ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई इमेज फाइल है तो इमेज फाइल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ की फ़ोटो खींची, किताब को पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो पहले कंप्यूटर में थे वो कंप्यूटर से मोबाइल पे भी आ गए। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक अंदर एक सेटिंग के अंदर एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी करके। एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या अकोमोडेशन हो सकते हैं, तो खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। तो टॉकबैक को अगर आप चालू करेंगे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन बोल पाएगा, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो मोबाइल का सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। किताबों को सुनना है पढ़ना है तो वो मोबाइल फ़ोन से ही अपनी किताबों को सुन सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अभी। अब इस पूरे इको सिस्टम का यूज़ करते हुए अब क्या किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी किताबों को एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको अपलोड कर दिया ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर इवन ऑडियो बुक्स को भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं किताबों को रिकॉर्ड करके। तो और फिर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल पे उनके ऐप होगा और वो ऐप के माध्यम से या उसको हम लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इन किताबों को सुनने के लिए प्लेयर्स बने हैं जिनको बोलते हैं डेजी प्लेयर। डेजी मतलब होता है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, DAISY। तो इसके माध्यम से हम डेजी प्लेयर के माध्यम से किताबों को सुन सकते हैं। और ये जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किताबें तैयार होती हैं, जैसे कि आम बच्चा जो है साइटेड बच्चा है किताब को पेज वाइज हेडिंग वाइज सब अंदर के सब हेडिंग्स वो आराम से सुन देख सकता है पढ़ने पलट के। तो हम किताब में भी ये फैसिलिटी है, ऑडियो बुक में भी या ई टेक्स्ट में भी, कि उसको हम इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं कि वो किताब मान लीजिए मुझे 115 पेज पे जाना है तो मैंने बस टाइप किया 115 तो किताब का 115वां पेज से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इससे जो एक कैसेट रिकॉर्डर जब हम रिकॉर्ड करते थे उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता था कि मान लीजिए अगर एक बार कैसेट रिकॉर्ड किए तो वो या लीनियर रिकॉर्डिंग होती थी तो कि आपको पता नहीं होता था कि कौन सी आपका मान ली किताब जो है 12 घंटे की किताब है तो आपका जो चैप्टर वो दूसरे नंबर के कैसेट में है कि 5वें नंबर के कैसेट में है कि 8वें नंबर के कैसेट में है, और फिर हमको उस चैप्टर के भी पर्टिकुलर सब सेक्शन में जाना है या हमको सिर्फ उसकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने क्वेश्चंस देखने, तो वो हमको पता नहीं होता था। पर यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हम स्किप कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए।
2: सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया और सवाल और मेरे मन में उठा कि आपने इतनी कंप्यूटर और मोबाइल में सब तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आज लोग जो यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा होगा।
3: जी, उनका जो
2: हर क्षेत्र में,
3: हाँ, लोगों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गया है। बच्चे जो है वो अपने आप अपना पढ़ाई कर लेते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE ने अलाउ कर दिया है लोगों को कि ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम खुद इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अभी तक उनको लिखना अपने राइटर पे डिपेंड करना होता था कि राइटर जो लिखेगा वो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था, उनको राइटर पे। अब उनको राइटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो चाहें तो अपना, अगर उनमें प्रैक्टिस कर ली है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे खुद दे सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस, कई लोगों के तो 90% से ऊपर 98% तक मार्क्स आए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो वो एक फ्रीडम मिल गई है। फिर ऐसे फील्ड्स जहाँ पे वो अभी तक काम नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उन फील्ड्स में उनकी पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने। लोग IT के फील्ड में जा रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल दे आर गोइंग IT का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, MBA कर करके लोग आगे निकल रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, फाइनेंस में, HR में, मार्केटिंग में। वो सब लोग जो हैं, अगर आप अपने आप को इक्विप रखेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे और सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में अब उनके लिए ओपनिंग्स शुरू खुल गई हैं, नौकरियाँ मिलने लगी हैं लोगों को और लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। पिछले 2 साल में इतना ज़बरदस्त फिर से क्रांति आई है IT फील्ड में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई इमेज है, तो इमेज को वो जो मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कराया जा सकता है कि किस चीज़ की इमेज है, फ़ोटो में क्या हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की फ़ोटो है तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, उसका वो का उसके आसपास का बैकग्राउंड क्या है, या मान लीजिए मैं इस रूम में आपको बैठ बात कर रहा हूँ तो मैंने इस रूम की फ़ोटो खींची, तो इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो मोबाइल के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तक पहुँच सकता है। तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया को बिना किसी और की मदद से जान सकते हैं।

0: सर, हम अक्सर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं काफ़ी, हमें क्या आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर किस तरह से एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एक किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे मदद मिल सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो आपको ऑडियो में फीडबैक दे सकती है, वो आपको हैप्टिक फीडबैक मतलब वाइब्रेशन के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको वॉइस क्लूज के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके आप उसकी मदद ले सकते हैं, आप उसका यूज़ अपने मूवमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हील चेयर यूज़ कर रहा है, मोटराइज्ड व्हील चेयर, तो वो उसका यूज़ ऐसे कर सकता है। वो हियरिंग एड हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई टेक्टाइल क्लू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेल डिस्प्ले आता है। तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करती है अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने में और अच्छे से करने के लिए करने में, और उसकी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी।
0: सर, एक बात तो और, ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं होते, मालूम नहीं होता। सर, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
1: इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं, जो आप हम लोगों की बातों को और जगह तक पहुंचाएंगे, जहां तक बहुत सारे लोग सुनेंगे इस बात को, तो उन तक तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बात पहुंच सकती है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करें, टीचर्स के साथ में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में, डिसेबल्ड लोगों के साथ में, उनको बताएं जा जाके कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे उसका यूज़ करना है और कैसे उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है इस टेक्नोलॉजी का, और कहाँ कहाँ वो अपने आप को, अपने डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये यूज़ करके, तो वो काम है लोगों का जो कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस, इससे मदद मिल पाएगी।
0: अक्टूबर के 2nd Thursday जो होता है उसमें विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो इस पर और कौन कौन से सर कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं स्पेशल? क्योंकि पहले और अब में तो काफ़ी डिफरेंस आया ही है, आप जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
1: देखिए, ऐसे ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं इनका पर्पज़ यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुंच पाए कि नंबर एक कि दृष्टि साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर दूसरी बात कि अगर साइट लॉस हो रहा है और वो क्योरेबल है तो उसको पहले क्योर करना, तीसरी बात ये कि जो लोग साइट लूज़ कर चुके हैं उनको सही गाइडेंस मिले, और वो अपने अगर लेट साइट लूज़ होती है, या एक कहना चाहिए कि एक उम्र के बाद अगर साइट लूज़ होती है तो एक ट्रॉमा सा आ जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका फाइनल ईयर, और धीरे धीरे करके उसकी साइट जा रही है, तो वो एक ट्रॉमा के स्टेट में पहुंच जाता है और वो डिप्रेशन की स्टेट में, तो उसको निकालना उस स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं तुम बिना आँख के भी सब कुछ कर सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिलवाना लोगों को, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों में इस तरह के फेस्टिवल्स ओकेजन्स मदद करते हैं।
0: तो सोसाइटी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती
1: है? सोसाइटी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि अगर हम इस बात पे विश्वास करें या इस बात को हम कम्युनिकेट करें या इस बात को समझें कि हर आदमी हर काम को कर सकता है, उसको काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर कैसे करेगा वो हमको फिर फिगर आउट करना होगा। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को नौकरियां नहीं देते कि अरे ये ब्लाइंड है, अरे ये काम कैसे करेगा, अरे ये यहाँ पे वहाँ पे जाएगा कैसे लोगों से मिलने के लिए, अरे पहले नौकरी तो दो आप उसको, तो और फिर उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग दो। तो वो अगर हम आपको इस बात में अगर हम लोगों को समझा पाएँ कि हर व्यक्ति, और कई बार क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने, कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, डिसेबल्ड लोगों की, ये लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए उनको लोगों को काम देने में डरते हैं, लोगों पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, उनको मदद करना चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती जो एक्चुअल उनको एम्पावर करने में करा जाए लोगों को और उनको सपोर्ट करें, तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हैं। तो सोसाइटी का कई काम है कि उसमें आपकी हेल्प करें।
0: सर आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो टेक्नोलॉजी पे हमने बात की कि किस तरह से आखिर में फिर से आप उनसे ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपनी जो पढ़ाई को ना रुकने दें और अपने भविष्य को बनाएं?
1: सबसे बड़ी बात है कि हमको जो इनक्विजिटिवनेस है या हमारी जिज्ञासा है अगर लोगों में बनी रहेगी और वो एक उनमें डिटर्मिनेशन रहेगा कि हमको अपने आगे बढ़ना है, तो लोग उनकी डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। तो पहले तो स्टेप दिव्यांग को खुद को लेना है, विकलांग व्यक्ति को, कि वो आगे बढ़े और फिर समाज भी उनको मदद करे। दोनों एक बड़ा पारस्परिक सा है ये संबंध, तो एक दूसरे की मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम लोग आगे की परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। और आई थिंक ये एक बात है।
0: इतना टाइम हो गया पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा
1: जी,
0: मतलब एक पॉजिटिव ये चेंज है। आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हर तरह से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्प कर रहे हैं
1: जी। हाँ, लोग हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर एक जो एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग मिलके एक ऐसा माहौल क्रिएट करें या एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि अधिक से अधिक लोगों को एक एम्पावरमेंट हो पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। तो वो सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके उसका एडवांटेज लोगों तक पहुंचाना, उनके भले के लिए, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, उनके रोज़गार में उनको बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक आस्पेक्ट बहुत है कि अब सारा जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेबसाइट्स कैसी हों कि जो ब्लाइंड बच्चा जो है, व्यक्ति है, वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए
0: जी।
1: है ना, पर वो उनको बोलते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG गाइडलाइंस कहलाती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें कि न केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही थी कि भाई रैंप, रेलिंग, पाथवे टाइल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पर इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक रेलवे स्टेशन पे टच स्क्रीन लगा रखा है, तो वो ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा उससे काम। अगर वो टॉकिंग होता, स्पीच होता उसके अंदर, तो ब्लाइंड व्यक्ति भी टच स्क्रीन का यूज़ करके टाइम टेबल पता कर लेता। या मान लीजिए आप POS मशीन है, तो वहाँ पर वो ब्लाइंड व्यक्ति जो है, क्योंकि टच स्क्रीन पर टाइप करके, नंबर टाइप करके पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट्स, ऐप्स और डिवाइसेस, इनको एक्सेसिबल बनाना, या माइक्रोवेव ओवन है उसमें टच स्क्रीन है, या वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन है, तो वो ब्लाइंड व्यक्ति काम में उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको सोसाइटी का काम ये है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर हर व्यक्ति उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए।
0: इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे?
1: हाँ, इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। जैसे भोपाल में मैं जानता हूँ कि एक संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर सिखाने में, मोबाइल का यूज़ करने में ब्लाइंड बच्चों को, तो वो लोग करते हैं। कई और संस्थाएं भी हैं जो कि इसमें काम लोग लगी हुई हैं। बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं आजकल। जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी आजकल वॉइस आने लगी है, तो आपको सुन के पता पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई कोविड के टाइम पे, जब मान लीजिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे टॉकिंग थर्मामीटर होता
0: जी,
1: या टॉकिंग ऑक्सीमीटर होता, तो लोगों को डर नहीं होता कि अगर किसी ब्लाइंड को कोविड हुआ है तो वो क्या करे, वो सामने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई बुखार लेने को तैयार नहीं था कि कितना बुखार है भाई इनको। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई भाई ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज़ बन रही है तो उसको ऐसा बनाए कि डिसेबल्ड लोग भी उसका यूज़ कर पाए।
0: सर आखिर में कोई आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: संदेश ये है कि बस कुल मिला के अगर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
0: सर आपने रेडियो आज़ाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
1: जी थैंक यू।
0: कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से बातचीत, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी। ये थी रेडियो आजाद हिंद की प्रस्तुति। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार अजीमुल्ला खान।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
2: नमस्कार श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रम भारत विभूति में आपका स्वागत है। भारत की महान परंपरा केवल राजाओं, योद्धाओं और संतों की परंपरा नहीं है, ये उन शिक्षकों, विचारकों और ज्ञान पुरुषों की भी परंपरा है जिन्होंने राष्ट्र की आत्मा को गढ़ा है। आज हम ऐसे ही एक महापुरुष की जीवन यात्रा पर चलेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी, गणित के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और भारतीय युवाओं में आत्मविश्वास जगाने का भी काम किया। आज की हमारी विभूति है सर आशुतोष मुखर्जी।
3: जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था तब बहुत से भारतीयों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता था कि ज्ञान, विज्ञान और शोध केवल पश्चिम की देन है। लेकिन उसी समय भारत की धरती पर एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हुआ जिसने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय बुद्धिमत्ता किसी से कम नहीं है। वह व्यक्ति था आशुतोष मुखर्जी, एक गणितज्ञ, एक न्यायविद, एक शिक्षाविद और सबसे बढ़कर एक राष्ट्र निर्माता।
2: 29 जून 1864 कलकत्ता का भवानीपुर क्षेत्र एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता थे डॉक्टर गंगा प्रसाद मुखर्जी, वो अपने समय के जाने माने चिकित्सकों में गिने जाते थे। माता जगत तारिणी देवी संस्कार, धर्म और भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतीक थीं। घर में विद्या, संस्कृति और अनुशासन का वातावरण था और यहीं से प्रारंभ हुई उस बालक की यात्रा जो आगे चलकर भारतीय शिक्षा जगत का एक युग पुरुष बनने वाला था।
3: बचपन से ही आशुतोष असाधारण प्रतिभा के धनी थे। कहा जाता है कि वे किसी भी विषय को केवल पढ़ते नहीं थे, उसे समझते थे। और केवल समझते ही नहीं थे, उसके भीतर छिपे तर्क को खोजने का प्रयास करते थे। शायद यही कारण था कि गणित उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करता था। संख्याएं उनके लिए केवल गणना का साधन नहीं थी, वे उनके लिए चिंतन का माध्यम थी।
2: उनकी प्रारंभिक शिक्षा चक्रबेड़िया स्थित साउथ सबर्बन स्कूल में हुई। विद्यालय के दिनों में ही उनकी प्रतिभा सबका ध्यान आकर्षित करने लगी थी। शिक्षक समझ चुके थे कि यह बालक साधारण नहीं है, उनके भीतर कुछ तो विशेष है, कुछ ऐसा जो उसे आने वाले समय में अति विशिष्ट बनाएगा।
3: सन 1879, आयु मात्र 15 वर्ष, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा और परिणाम आया। आशुतोष मुखर्जी ने पूरे विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उस समय यह उपलब्धि असाधारण मानी जाती थी। यह सफलता केवल एक विद्यार्थी की नहीं थी, यह भारतीय प्रतिभा की बड़ी पहली घोषणा थी।
2: और इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यह वही संस्थान था जहाँ उस समय भारत के कई प्रतिभाशाली युवा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। यहीं उनकी मुलाकात दो महान व्यक्तित्वों से हुई। एक थे वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय और दूसरे थे नरेंद्र नाथ दत्त। वही नरेंद्र नाथ दत्त जिन्हें दुनिया बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगी।
3: जरा कल्पना कीजिए उस वातावरण की, एक ओर विज्ञान का उजाला, दूसरी ओर आध्यात्मिक चिंतन, एक ओर आधुनिकता और दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की गहराई। इन सबके बीच अध्ययन कर रहे थे आशुतोष मुखर्जी। यह वातावरण उनके व्यक्तित्व को और व्यापक बनाता चला गया।
2: सन 1883 में उन्होंने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें प्रतिष्ठित प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति प्रदान की गई। यह उस समय की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित शैक्षणिक उपलब्धियों में से एक मानी जाती थी। लेकिन आशुतोष मुखर्जी के लिए ये केवल एक पड़ाव मात्र था, उनकी यात्रा अभी बहुत आगे तक जाने वाली थी।
3: गणित में उनकी रुचि लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गणित में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और इसके बाद भौतिक विज्ञान में भी स्नातकोत्तर किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के इतिहास में पहले ऐसे विद्यार्थी बने जिन्होंने दो अलग अलग विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की। आज भी यह उपलब्धि अत्यंत प्रेरणादायक मानी जाती है।
2: लेकिन एक और खास बात थी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वो लगातार शोध कार्यों में भी लगे हुए थे। जब अधिकांश विद्यार्थी केवल परीक्षाओं की तैयारी करते, तब आशुतोष मुखर्जी नए गणितीय प्रश्नों के समाधान खोज रहे थे। वो विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों को पढ़ा करते, उनके प्रश्नों पर विचार करते और अपने समाधान भी तैयार करते।
3: सन 1880 के दशक का भारत, जहां शोध के अवसर सीमित थे, वैज्ञानिक संसाधन कम थे, फिर भी एक युवा भारतीय गणितज्ञ विश्व के प्रतिष्ठित गणितीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था, और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था।
2: 1881 में उन्होंने यूक्लिड के प्रसिद्ध ज्यामितीय संरचना से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रमेय का नया प्रमाण प्रस्तुत किया। ये शोध इंग्लैंड की प्रसिद्ध गणितीय पत्रिका मैसेंजर ऑफ मैथमेटिक में प्रकाशित हुआ। उस समय किसी भी भारतीय विद्वान के लिए यह अत्यंत गौरव की बात थी।
3: इसके बाद उन्होंने सलमोन के प्रमेय पर महत्वपूर्ण कार्य किया, एलिप्टिक फंक्शंस पर शोध किया, डिफरेंशियल समीकरणों पर लेख लिखे, ज्यामिति और कलन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनके शोध पत्र इंग्लैंड और भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे, और धीरे धीरे उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय गणितीय समुदाय में पहचाना जाने लगा।
2: श्रोताओं, कहा जाता है कि गणित उनके लिए केवल एक विषय नहीं था, वो उनके सोचने का एक तरीका था। वो हर समस्या को तर्क और विश्लेषण की दृष्टि से देखते थे, और शायद यही वजह थी कि बाद में जब वो शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में आए, तब भी उनकी निर्णय क्षमता अत्यंत साफ और व्यवस्थित रही।
3: 1888 तक आते आते वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो चुने गए। उस समय उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। यह सम्मान किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता था। यह उस प्रतिभा की सार्वजनिक स्वीकृति थी जिसे पूरा शैक्षणिक जगत पहचान चुका था।
2: लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि अगर आशुतोष मुखर्जी इतने बड़े गणितज्ञ थे, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल गणित को क्यों नहीं समर्पित किया? वो विश्व के महानतम गणितज्ञों में स्थान प्राप्त कर सकते थे। उनके पास वो प्रतिभा थी, उनके पास वो क्षमता भी थी, फिर उन्होंने दूसरा मार्ग क्यों चुना?
3: क्योंकि उनके भीतर केवल एक गणितज्ञ नहीं था, उनके भीतर एक राष्ट्रभक्त भी था, और वे समझ चुके थे कि भारत को केवल एक महान वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है, भारत को ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो हजारों वैज्ञानिक तैयार कर सके। भारत को ऐसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है जो विश्व स्तर का ज्ञान उत्पन्न कर सकें, और शायद यही विचार उनके जीवन की दिशा बदलने में सहायक सिद्ध हुआ। देश में नई चेतना जन्म ले रही थी। लोग शिक्षा को केवल नौकरी का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय जागरण का साधन मानने लगे थे। ऐसे समय में आशुतोष मुखर्जी ने अपनी प्रतिभा को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने तय किया कि अब उनका ज्ञान समाज के काम आएगा।
2: हालांकि गणित के क्षेत्र में उनकी यात्रा लगातार आगे बढ़ रही थी। वो शोध कर रहे थे, नए प्रमेयों पर काम भी कर रहे थे, ज्यामिति और कलन के जटिल प्रश्नों का वो समाधान खोज रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को भी समझ रहे थे।
3: उस समय अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय केवल परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाएं थीं। ज्ञान की रचना कम होती थी, शोध की परंपरा लगभग न के बराबर थी, प्रयोगशालाएं सीमित थीं, और भारतीय विद्यार्थियों के सामने अवसर भी बहुत कम थे। आशुतोष मुखर्जी इस स्थिति से कतई संतुष्ट नहीं थे।
2: श्रोताओं, आप जानते हैं कि वो मानते थे कि यदि किसी राष्ट्र को वास्तव में शक्तिशाली बनाना है, तो उसे ज्ञान के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। उसे ऐसे विश्वविद्यालय चाहिए होंगे जो केवल पढ़ाए नहीं, बल्कि नया ज्ञान भी उत्पन्न करें, जो केवल डिग्रियां ना दें, बल्कि एक नया विचार भी दें।
3: यही सोच उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर ले गई। सन 1888 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो बने। उस समय उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में यह जिम्मेदारी मिलना उनकी प्रतिभा और प्रतिष्ठा

0: थे।
1: शोध पत्रों की सूची देखें तो पता चलता है कि उन्होंने यूक्लिड के प्रमेयों से लेकर मोंज के समीकरणों तक अनेक विषयों पर कार्य किया। उन्होंने गणित को केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने ये भी दिखाया कि गणित का उपयोग वास्तविक जीवन की जटिल समस्याओं को समझने में कैसे किया जा सकता है।
0: उनकी एक और विशेषता थी, वे केवल नए शोध नहीं करते थे, वे गणित को सरल बनाने का प्रयास भी करते थे। कहा जाता है कि वे जटिल ज्यामितीय सिद्धांतों को बीजगणितीय रूप में समझाने का प्रयास करते थे ताकि विद्यार्थी उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकें।
1: सन 1887 से सन 1890 के बीच उन्होंने भारतीय विज्ञान संवर्धन संस्था में गणित के अनेक व्याख्यान दिए। इन व्याख्यानों में विद्यार्थी, शिक्षक और शोधार्थी बड़ी संख्या में हिस्सा लेते थे। उनकी भाषा विद्वत्तापूर्ण होते हुए भी सरल होती, वो कठिन से कठिन विषय को रोचक बना दिया करते।
0: श्रोताओं, ये वही समय था जब उनके भीतर शिक्षक का स्वरूप और अधिक स्पष्ट होने लगा था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह दूसरों तक पहुंचे, जब वह समाज को लाभ पहुंचाए।
1: आशुतोष मुखर्जी का यह विश्वास था कि भारत को पश्चिम से सीखना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। उन्होंने हमेशा भारतीय और पाश्चात्य ज्ञान परंपराओं के संतुलन की बात की। उनका मत था कि विज्ञान सार्वभौमिक है, लेकिन शिक्षा की आत्मा अपने समाज और संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए।
0: और उनके विचारों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। शिक्षा जगत में उनका सम्मान बढ़ रहा था। गणितज्ञ उन्हें अपने बीच का विद्वान मानते थे, शिक्षक उन्हें प्रेरणा मानते थे और विद्यार्थी उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे।
1: लेकिन आशुतोष मुखर्जी केवल एक विषय तक सीमित रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई भी पूरी की और जल्द ही न्यायिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना ली।
0: यह उनके व्यक्तित्व की एक अद्भुत विशेषता थी, एक ओर गणितज्ञ, दूसरी ओर वैज्ञानिक चिंतक, तीसरी ओर शिक्षाविद और अब एक विधिवेत्ता। ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व इतिहास में विरला ही देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। उनका अध्ययन इतना व्यापक था कि लोग उन्हें चलता फिरता विश्वविद्यालय कहा करते थे। किसी भी विषय पर उनसे बातचीत कर लीजिए, इतिहास, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कानून या गणित, हर विषय पर उनकी पकड़ अद्भुत थी।
0: इसी बीच उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में गणित के लिए सशक्त मंच होना चाहिए और ऐसा मंच जहां गणितज्ञ अपने विचार साझा कर सकें, जहां शोध को प्रोत्साहन मिले, जहां भारतीय प्रतिभाएं विकसित हो सकें।
1: और इसी विचार के साथ आगे चलकर कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ये संस्था भारत में गणितीय अनुसंधान की महत्वपूर्ण आधारशिला बनी। आशुतोष मुखर्जी इसके संस्थापकों में अग्रणी थे और लंबे समय तक इसके नेतृत्व से जुड़े रहे।
0: आज जब हम भारत में गणितीय अनुसंधान की समृद्ध परंपरा देखते हैं तो उसके प्रारंभिक स्तंभों में आशुतोष मुखर्जी का नाम अवश्य दिखाई देता है। उन्होंने न केवल स्वयं शोध किया बल्कि शोध की संस्कृति भी विकसित की।
1: धीरे धीरे उनकी दृष्टि और व्यापक होती चली गई। अब वो केवल गणित या किसी एक विषय के विकास की बात नहीं कर रहे थे, वो पूरे शिक्षा तंत्र के परिवर्तन की बात कर रहे थे।
0: और यहीं से आरंभ होता है उनके जीवन का वह अध्याय जिसने उन्हें भारतीय शिक्षा जगत का महानायक बना दिया। एक ऐसा अध्याय जिसमें वे विश्वविद्यालयों का स्वरूप बदलते हैं, नई संस्थानों की स्थापना करते हैं, देश भर की प्रतिभाओं को आगे लाते हैं और भारतीय उच्च शिक्षा को नई दिशा देते हैं। और अब उस समय की बात करते हैं जब भारत राजनीतिक रूप से गुलाम था लेकिन मानसिक रूप से जाग रहा था। देश में नई चेतना का उदय हो रहा था। युवा वर्ग शिक्षा को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का मार्ग मानने लगा था और ऐसे समय में शिक्षा संस्थानों की भूमिका पहले से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी।
1: साल था 1906। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में एक ऐसा नाम सामने आया जो आने वाले वर्षों में भारतीय शिक्षा का पर्याय बन गया, आशुतोष मुखर्जी।
0: उपकुलपति का पद संभालते ही उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाले संस्थान नहीं रहेगा, यह ज्ञान निर्माण का केंद्र बनेगा। यहाँ केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाए जाएंगे, यहाँ शोध होगा, नवाचार होगा, नए विचार जन्म लेंगे।
1: उस समय अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय अंग्रेजी प्रशासन की जरूरतों के अनुसार काम कर रहे थे। उनका उद्देश्य ऐसे कर्मचारी तैयार करना था जो शासन व्यवस्था को चलाने में सहायता कर सकें। लेकिन आशुतोष मुखर्जी का सपना इससे कहीं अधिक बड़ा था। वो ऐसे विश्वविद्यालय चाहते थे जो राष्ट्र की बौद्धिक शक्ति बने।
0: उन्होंने सबसे पहले उच्च शिक्षा में शोध की संस्कृति को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि केवल किताबें पढ़ लेने से कोई समाज महान नहीं बन सकता। महान समाज वह होता है जो नया ज्ञान उत्पन्न करता है, जो नए प्रश्न पूछता है और उनके उत्तर खोजता है।
1: और यही कारण था कि उन्होंने विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रमों और उच्च अध्ययन को विशेष महत्व दिया। उन्होंने योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया, शोध वृत्तियां शुरू की और नए विभागों की स्थापना का भी मार्ग प्रशस्त किया।
0: उनकी दूरदृष्टि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था विज्ञान शिक्षा को दिया गया महत्व। उस समय विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी, संसाधन भी सीमित थे, लेकिन आशुतोष मुखर्जी समझ चुके थे कि आने वाला युग विज्ञान का युग होगा।
1: और इसीलिए उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा के विस्तार के लिए भी अथक प्रयास किए। उनका सपना था कि भारत के विद्यार्थी विदेश जाए बिना भी उच्च स्तर का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकें, और साथ ही ये भी कि भारत की धरती पर ही विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित हों।
0: उनके प्रयासों का परिणाम था कलकत्ता विश्वविद्यालय का विज्ञान महाविद्यालय। यह केवल एक भवन नहीं था, यह भारतीय विज्ञान के भविष्य की नींव था।
1: कहा जाता है कि संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार लोगों से सहयोग मांगते रहे, दानदाताओं को प्रेरित करते रहे और अंततः उनका सपना साकार हुआ।
0: यहीं से आगे चलकर अनेक वैज्ञानिक तैयार हुए जिन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। वास्तव में यदि हम आधुनिक भारतीय विज्ञान के इतिहास को देखें तो उसकी जड़ों में कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी की दूरदृष्टि दिखाई देती है।
1: लेकिन विज्ञान ही उनकी प्राथमिकता नहीं था, उनकी दृष्टि अत्यंत व्यापक थी। वो भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान परंपराओं को भी उतना ही महत्व देते थे।
0: उस समय अंग्रेजी शिक्षा को ही श्रेष्ठ माना जाता था, भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा के योग्य नहीं समझा जाता था। लेकिन आशुतोष मुखर्जी इस सोच से सहमत नहीं थे।
1: बिल्कुल, क्योंकि वो मानते थे कि कोई भी राष्ट्र अपनी भाषा और संस्कृति से कटकर महान नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं और भारतीय अध्ययन को प्रोत्साहन दिया।
0: संस्कृत, पाली, बांग्ला, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, इन सभी विषयों को उन्होंने सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास किया।
1: उनका विश्वास था कि आधुनिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति साथ साथ चल सकते हैं। एक और प्रयोगशालाएं हो सकती हैं, तो दूसरी ओर साहित्य और दर्शन भी। एक ओर आधुनिक शोध हो सकता है तो दूसरी ओर परंपरा का संरक्षण भी।
0: यही संतुलित दृष्टि उन्हें अपने समय के अन्य शिक्षाविदों से अलग बनाती है। वे अतीत में अटके हुए व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे अपनी जड़ों को छोड़कर आगे बढ़ने में भी विश्वास नहीं करते थे।
1: आशुतोष मुखर्जी की एक और विशेषता थी, प्रतिभा को पहचानने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। वो व्यक्ति नहीं देखते थे, वो क्षमता देखते थे।
0: कई युवा विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को उन्होंने अवसर दिए, उनकी सहायता की, उन्हें आगे बढ़ने का मंच दिया, क्योंकि वे जानते थे कि एक प्रतिभा को अवसर देना राष्ट्र के भविष्य में निवेश करना है।
1: और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इतना व्यापक था कि विद्यार्थी उन्हें केवल प्रशासक नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानते थे। वो उनके पास केवल शैक्षणिक समस्याएं लेकर ही नहीं आते थे, बल्कि उनसे वो अपने जीवन से जुड़े प्रश्न भी पूछते थे।
0: आशुतोष मुखर्जी का उत्तर केवल एक ही दिशा में होता था, परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास। वे कहते थे कि यदि व्यक्ति में ये तीन गुण हैं तो सफलता देर से मिलेगी लेकिन अवश्य मिलेगी।
1: धीरे धीरे उनका नाम पूरे भारत में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनकी विद्वता और उनकी निर्भीकता और उनकी राष्ट्र निष्ठा, इन सब ने मिलकर उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बना दिया।
0: इसी दौरान लोगों ने उन्हें एक नया नाम देना शुरू किया, बंगाल का बाघ। यह केवल एक प्रशंसा नहीं थी, यह उनके साहस और स्वाभिमान का सम्मान था।
1: कारण था कि वो किसी भी तरह के दबाव के सामने झुकते नहीं थे। यदि उन्हें लगता कि कोई निर्णय शिक्षा या विद्यार्थियों के हित में नहीं है तो वो खुलकर उसका विरोध करते, चाहे सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना खड़ी हो।
0: उनके लिए केवल पद महत्वपूर्ण नहीं था, सिद्धांत महत्वपूर्ण थे, प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं थी, सत्य महत्वपूर्ण था। और यही कारण था कि वे लाखों विद्यार्थियों की प्रेरणा बन गए।
1: श्रोताओं, जब आज हम भारत के शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि जिन संस्थाओं और परंपराओं पर हमें गर्व है, उनकी नींव रखने वालों में आशुतोष मुखर्जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
0: लेकिन उनके जीवन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी हमें जानना है एक न्यायाधीश के रूप में उनका योगदान, एक पिता के रूप में उनकी भूमिका, और वह विरासत जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी। वे केवल एक शिक्षाविद तक सीमित नहीं थे, वे न्याय के क्षेत्र में भी उतने ही सम्मानित थे जितने शिक्षा के क्षेत्र में।
1: कानून की शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में प्रवेश किया। उनके तार्किक क्षमता, गहन अध्ययन और निष्पक्ष दृष्टि ने शीघ्र ही उन्हें विशिष्ट पहचान दिलाई।
0: गणित ने उन्हें तर्क दिया था, विज्ञान ने उन्हें विश्लेषण की क्षमता दी थी, और कानून ने उन्हें न्याय का दृष्टिकोण दिया। इन तीनों का अद्भुत समन्वय उनके निर्णयों में भी दिखाई देता था।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की। उनकी पहचान एक ऐसे न्यायाधीश की थी जो तथ्यों को गहराई से समझता था और किसी भी तरह के दबाव से प्रभावित नहीं होता था।
0: उनके लिए न्याय केवल कानून की भाषा नहीं था, यह नैतिक उत्तरदायित्व भी था। वे मानते थे कि न्यायालय केवल विवादों का समाधान करने का स्थान नहीं, बल्कि समाज के विश्वास का केंद्र है।
1: यही कारण था कि न्यायपालिका में भी उनका सम्मान अत्यंत ऊंचा था, लेकिन जितना बड़ा उनका पद था, उतनी ही बड़ी उनकी विनम्रता भी थी।
0: उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था उनका पारिवारिक जीवन। वे एक अनुशासित पिता थे, लेकिन उससे भी अधिक एक प्रेरक मार्गदर्शक।
1: उनके पुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रमुख राष्ट्रनायकों में गिने गए, लेकिन किसी भी महान व्यक्तित्व के पीछे कुछ संस्कार भी होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व में इन आदर्शों की छाप साफ दिखाई देती है।
0: आशुतोष मुखर्जी ने अपने बच्चों को केवल शिक्षा नहीं दी, उन्होंने आत्मसम्मान दिया, उन्होंने सत्य के प्रति निष्ठा दी, उन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना दी।
1: वो मानते थे कि किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके चरित्र से होती है। डिग्रियां और पद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन चरित्र से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता।
0: उनका जीवन इस विचार का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने कभी सुविधा का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने हमेशा सही मार्ग चुनने का प्रयास किया, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो।
1: और आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं, तो पाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई एक संस्था नहीं थी, कोई एक पद नहीं था, कोई एक सम्मान नहीं था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक ऐसी बौद्धिक परंपरा का निर्माण जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया।
0: उन्होंने भारतीय युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे भी विश्व स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय शिक्षा को यह आत्मविश्वास दिया कि वह केवल अनुकरण करने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि ज्ञान निर्माण करने वाली व्यवस्था भी बन सकती है।
1: श्रोताओं, उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण है, शिक्षा का उद्देश्य समाज को बेहतर बनाना है, और शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत करना है।
0: आज भारत के विश्वविद्यालयों में जो शोध हो रहे हैं, आज भारतीय वैज्ञानिक जो उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, आज भारतीय विद्यार्थी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो पहचान बना रहे हैं, उन सब की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी जैसे दूरदर्शी शिक्षाविदों का योगदान मौजूद है।
1: उनकी दृष्टि समय से बहुत आगे थी। वह ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जो ज्ञान में आत्मनिर्भर हो, जो अपनी संस्कृति पर गर्व करे, जो विज्ञान में अग्रणी हो, और जो दुनिया का केवल अनुसरण ना करे बल्कि उसे दिशा भी दे।
0: पच्चीस मई 1924, ये वह दिन था जब यह महान व्यक्तित्व भौतिक रूप से हमारे बीच से विदा हो गया। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन काल से बड़े हो जाते हैं, वे शरीर से नहीं अपने विचारों से जीवित रहते हैं। आशुतोष मुखर्जी ऐसे ही व्यक्तित्व का नाम है।
1: उनके स्मृति आज भी भारतीय शिक्षा जगत में जीवित है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनका जीवन आज भी प्रेरणा देता है।
0: जब भी कोई विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, जब भी कोई शिक्षक शिक्षा को केवल नौकरी नहीं मिशन मानता है, जब भी कोई विश्वविद्यालय नए ज्ञान के निर्माण का संकल्प लेता है, तब कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी की विरासत हमारे सामने उपस्थित होती है।
1: श्रोताओं, भारत विभूति के आज के इस विशेष अंक में हमने जाना एक ऐसे महापुरुष को जिसने गणित को साधना बनाया, शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया और अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया।
0: सर आशुतोष मुखर्जी को विनम्र श्रद्धांजलि, उनके विचारों को नमन, उनके योगदान को प्रणाम।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ अब हम इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह भारत विभूति में हम फिर मिलेंगे भारत के एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के साथ।
0: तो श्रोताओं, यह था कार्यक्रम भारत विभूति। आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की सर आशुतोष मुखर्जी के बारे में। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, आलेख मनीषा चतुर्वेदी का था और मैं था आपके साथ विजयकांत नायक
1: और मैं थी आपकी रेडियो मित्र स्वाति।
0: ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन में, जहां नृत्यांजलि कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए इस कार्यक्रम में।
1: कर्तव्य ध्वनि के मध्य अर्धनारेश्वर अष्टकम्।

Mm-hmm.

Didn't know.

Come.

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित नारायण ब्रज।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
2: इस गुच्छे में आज हम आपके लिए ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं तप की शांति से दमकती हैं। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे श्री कृष्ण ने कर्ण के समक्ष उसके जन्म का वह रहस्य उद्घाटित किया जिसने वर्षों से दबे हुए घावों को फिर से हरा कर दिया। कर्ण की वाणी में पीड़ा थी, तिरस्कार की तपिश थी और उस पुत्र का मौन विद्रोह भी था जिसे संसार ने जन्म से पहले ही मानो किनारे कर दिया था। उसने जन्म देने वाली माँ से प्रश्न किए, समाज की कठोरता पर चोट की और राधा के वात्सल्य को अपने जीवन का सच्चा आधार बताया। अब काव्य कथा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां कर्ण केवल अपनी वेदना नहीं कहेगा बल्कि मित्रता, कृतज्ञता और अपने अटल धर्म पर ऐसा स्वर प्रकट करेगा जो इतिहास के आकाश में वज्र रेखा की तरह अंकित हो जाएगा। आइए सुनते हैं तीसरे सर्ग से भाग 5 को जहां कर्ण कृष्ण को कह रहे हैं,
3: पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वो दुर्योधन, वो नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यश मान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य ये सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर थाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सोयश उससे पाया, अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तने, जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वो यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, ये कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही ना सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति कही, चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं ना चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जब योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता ना कर्ण दुर्योधन को, पांडव ना कभी जाते वन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। ये बीच नदी की धारा है, सूझता ना कुल का किनारा है। ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, ये सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय ना तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं, कुल को खाते और खोते हैं।
1: श्रोताओं, दिनकर जी यहां ऐसे प्रतीत होते हैं मानो स्वयं हर पात्र की आत्मा में प्रवेश कर गए हों। कृष्ण की करुणा, कर्ण का कंपन और समय की थरथराती हुई प्रतीक्षा सब एक साथ धड़कते हैं। कृष्ण युद्ध का चित्र भी दिखाते हैं, रक्त की धार, विधवाओं की पुकार, अनाथ बच्चों की चीख और फिर शांति का स्वप्न भी रचते हैं, जैसे दो दर्पण सामने रख दिए हों, एक में विनाश और दूसरे में मिलन का आलोक। ये प्रसंग आज भी उतना ही सत्य है। जब हम अहंकार में निर्णय लेते हैं तब कोई भीतर से हमें पुकारता है, रुक जा, अभी भी समय है। पर क्या हम उस आवाज को पहचान पाते हैं? यही प्रश्न कर्ण के सामने है और यही प्रश्न हमारे सामने भी। अब देखना है करुणा की ये गंगा कर्ण के हृदय तट को भेद पाती है या नहीं।
2: श्रोताओं, जिसके हृदय में कृतज्ञता ही धर्म बनकर प्रतिष्ठित हो जाती है, वह अपने जीवन का मूल्य भी उसी ऋण के सामने तुच्छ मानता है। ऐसा मनुष्य संबंधों को अवसर के लिए नहीं त्यागता। आगे काव्य संवाद शेष है, लेकिन बात साफ है, यहाँ धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े अवश्य दिखाई देते हैं, किंतु प्रश्न ये है कि वास्तविकता किसे कहें। हर मनुष्य अपने अपने हिस्से का कर्ण है, अपनी अपनी कर्म भूमि में खड़ा, अपने निर्णयों के बोझ और संबंधों के ऋण के साथ। आज के समय में जब रिश्ते अक्सर स्वार्थ की तुला पर तौले जाते हैं ना, जब विश्वास लाभ हानि की गणना में खो जाता है, ऐसे युग में कर्ण एक तीखी रेखा की तरह उभरता है। वह अडिग है क्योंकि उसके लिए कृतज्ञता सौदे से बड़ी है। आइए हम दिनकर जी की इस भावपूर्ण काव्य कथा में कर्ण के भाव समंदर के साथ चलें। अब सुनते हैं तृतीय सर्ग का भाग 6, जहां स्वयं श्री कृष्ण साक्षी हो रहे हैं और प्रतिज्ञाओं की तरफ।
3: विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता ना छत्र पुरखों का था, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या, रण में कुरुपति का विजय वरण या पार्थ हाथ कर्ण का मरण, हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है, मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वो नर जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो, अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छांह गही मैंने, उस पर ना वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है तन, धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी नछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं, सिर लिए स्कंध पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुरज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है, कुरुराज चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना, जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं, धन राशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोग

0: श्रोताओं, सूर्यपुत्र होकर भी छाया में पला वो महापुरुष नाम से नहीं अपने कर्म से पहचाना गया, जिसने उपकार को ही धर्म बना लिया वो साधारण नहीं रह जाता। और कर्ण उसी असाधारणता का नाम है, उसके लिए वचन ही वेद है, कृतज्ञता ही तप है और मित्रता ही उसकी मर्यादा। जन्म ने उसे पुकारा, राज्य ने उसे ललचाया, करुणा ने उसे समझाया, पर वो अडिग रहा। उसने सुविधा नहीं सिद्धांत चुना, अवसर नहीं उत्तरदायित्व चुना।
1: कर्ण के सामने अब ना राज्य का आकर्षण है और ना वैभव का स्वप्न। उसे चाहिए तो बस मित्रता का सहारा और अपने कर्तव्य की अग्नि में तपकर जीवन की प्यास बुझाने का अवसर। वह जानता है कि आगे रण है, संभव है विनाश हो, फिर भी उसके स्वर में डगमगाहट नहीं है, केवल धधकता हुआ संकल्प है। वह अपने सत्य पर अडिग है, अपने ऋण पर अटल है और उसी दृढ़ता में उसकी महानता चमक उठती है। जिसे धूप ने पाला हो वह छांव से डर जाता है, जिसे जग ने ठुकराया हो वह नाम से डर जाता है। कर्ण हृदय में अग्नि लिए मुस्काता तो है, लेकिन भीतर कोई टूटा बचपन अब भी रोता जाता है।
0: राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने यहाँ कर्ण को केवल योद्धा नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे मानवीय गरिमा का प्रतीक बना दिया है। जिस मनुष्य के लिए वचन ही प्राण बन जाएं, उसे संसार हरा सकता है, छोटा नहीं कर सकता। कर्ण का यही तेज इस प्रसंग को कालजयी बना देता है। आइए बढ़ते हैं रश्मिरथी के तृतीय सर्ग के अंतिम भाग की ओर, जहां कर्ण का तेज, उसका त्याग और उसका अटल संकल्प इतिहास के आकाश पर अमिट रेखा बनकर उभरता है। सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 7 का काव्य पाठ।
2: तुच्छ है राज्य, क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव, चिंता प्रभूत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्य कुछ पल विलास, पर वो भी यहीं गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से भी ना कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाव्य शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुण ना होता है, कंचन पर कभी ना सोता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता निज तपशील, सत्ता क्रीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मर्ज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आताप अंधड़ में जिए बिना, वो पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता, उड़ते जो झंझावातों में, पीते सो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणीबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय चुड़ाते हैं। मैं करुण कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विधि उसे छोर, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतू की समर में डूब मरूं, अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, हां एक विनय है मधुसूदन, मेरी ये जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रही है, वैसे इसे जान यदि पाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य ना कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से ना छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रमाण आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे, शार से चरण स्पर्शन होंगे, जय हो दिनेश नभ में विहिरे, भूतल में दिव्य प्रकाश बने।
1: रथ से राधेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले,
3: वीर शत बार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान।
1: और फिर जैसे समय स्वयं ठिठक गया हो, रथ के पहिए स्थिर, दिशाएं मौन, वायु निश्वास रोके खड़ी, ऐसा लगा मानो काल भी उस क्षण के आगे नतमस्तक हो गया हो, सूर्य पुत्र की दृढ़ता के आगे आकाश स्वयं झुक गया और पृथ्वी ने उस संकल्प को अपने हृदय में अंकित कर लिया। कर्ण का चरित्र जितना तेजस्वी है उतना करुण भी, वह जानता है कि जिस पथ पर वह चल रहा है वहां पुष्प नहीं शूल बिछे हैं, फिर भी वह लौटता नहीं, क्योंकि कुछ लोग विजय पाने के लिए जन्म नहीं लेते, वे मर्यादा निभाने के लिए जन्म लेते हैं। आज के समय में जहां मनुष्य स्वार्थ की नाव पर बैठकर संबंधों की नदी पार करना चाहता है, वहां कर्ण किसी प्राचीन शंख नाद की तरह सुनाई देता है, जैसे कह रहा हो, उपकार का ऋण शब्दों से नहीं जीवन से चुकाया जाता है।
3: कृष्ण की दृष्टि गहन उठती है, वे जानते हैं ये केवल एक योद्धा का निर्णय नहीं है, इतिहास की धुरी का घूम जाना है। कर्ण शांत है, पर उसकी शांति में महाप्रलय की आहट छिपी है। श्रोताओं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण की इस काव्य यात्रा में मानो स्वयं को पूरी तरह अर्पित कर दिया है। उनकी लेखनी में ऐसा ओज है, ऐसा तेज है कि कथा स्वयं केवल इतिहास नहीं रहती, जीवन का दर्पण बन जाती है। प्रत्येक पंक्ति हमें झकझोरती है, सिखाती है कि यदि मनुष्य अपने संकल्प पर अडिग हो जाए तो परिस्थितियां भी उसके आगे सिर झुका देती हैं।
1: दिनकर जी चाहते तो किसी विजयी प्रतिष्ठित पात्र को अपना नायक बनाते, किंतु उन्होंने चुना कर्ण को, वंचित, उपेक्षित, परंतुत, यही उनकी दृष्टि की व्यापकता है। श्रोताओं, रश्मि रथी में कर्ण केवल पात्र नहीं, मानवीय गरिमा का प्रतीक बन उठता है। दिनकर स्वयं सारथी बनकर उसके रथ को शब्दों की दिशा देते हैं, और कर्ण उस रथ का रथी बनकर इतिहास के आकाश पर अमिट रेखा खींच देता है। इसी मार्मिक ऊंचाई पर तृतीय सर्ग का समापन होता है, यही शब्द थम जाते हैं पर संकल्प अमर हो जाता है। अब समय है आपसे विदा लेने का। आशा है काव्य गुंजन में रश्मि रथी के इस अद्भुत यात्रा से आपको जीवन के कुछ अनमोल सूत्र अवश्य ही मिल रहे होंगे। यही इस काव्य की शक्ति है, ये हमें केवल कथा नहीं सुनाता बल्कि हमारे भीतर छिपे तेज, साहस और स्वाभिमान को पहचानने की प्रेरणा देता है। श्रोताओं, रश्मि रथी के इस अद्भुत रथ पर सवार दिनकर जी के रचे इस ओजस्वी मार्ग से गुजरते हुए मन कह उठता है, जिसे समय ने ठुकराया था वह कालजयी बन बैठा, जो जीवन भर अकेला था वही लोक हृदय में बैठा, नभ का सूर्य ढल भी जाए तो ज्योति कहाँ मर पाती है, कर्ण सरीखे पुरुषों की गाथा अमरत्व कहलाती है।
3: श्रोताओं, जीवन केवल सुख की सरिता, केवल छाया, केवल मान नहीं, ये तो विषपान का तप भी है, ये केवल मधुमास नहीं जो विपदा के नागपाश में भी अपना धैर्य संभाल सके, जो टूटे फिर भी भीतर से अपने तेज को जगा सके, श्रोताओं, तृतीय सर्ग यही अपने चरम भाव पर पहुंचकर विराम लेता है, पर ये विराम वैसा नहीं जहां ये काव्य कथा थम जाए। ये तो उस श्वास जैसा है जो तूफान आने से पहले वातावरण में भर जाती है। आगे चतुर्थ सर्ग में नियति और अधिक विकराल रूप धारण करेगी, संबंधों के आवरण हटेंगे, युद्ध की छाया और सघन होगी और कर्ण का व्यक्तित्व एक नए आलोक में प्रकट होगा। अगले अंक में फिर मिलेंगे रश्मिरथी की उसी महायात्रा के अगले सोपान के साथ। अब हमें अनुमति दीजिए, जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे।
1: जी हाँ, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का। श्रोताओं, आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना,
3: मैं संदीप शर्मा
4: और मैं दीपक नेमा।
1: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर विराम लेती है। फिर मिलेंगे आपसे एक नए अंक में, तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा,
5: नमस्कार।
0: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
6: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित नारायण ब्रज।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गुरु महिमा।

0: नमस्कार, मैं हूं कंचन। श्रोताओं, आज गुरु पूर्णिमा है, आइए हम जानते हैं गुरु की महिमा के बारे में। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में है पंडित नलिनी त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद कंचन जी।
0: पंडित जी, कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में गुरु का बेहद महत्व होता है और गुरु होना भी चाहिए, तो हम इसके बारे में तो ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि गुरु शब्द बना कैसे और इसका अर्थ क्या है।
1: बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कंचन जी आपने, क्योंकि मूल आधार ही पहले बहुत मजबूत होना चाहिए, हमें मालूम हो कि गुरु शब्द क्या है। तो आइए हम चर्चा करते हैं शास्त्रों से
0: जी।
1: शास्त्र हमारे बतलाते हैं, गु शब्दस्तु अंधकारस्यात् रु शब्दस्तन्निरोधकः। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रु शब्द का अर्थ होता है उसे रोकने वाला। अर्थात हमारे जीवन में एक ऐसा तत्व जो अंधकार का उन्मीलन कर दे, अर्थात इस संसार सागर की सघन अंधकारमय स्थितियों में वो ज्ञान का दीप जला दे, वो हमारे अंतर तमस को मिटा दे, केवल एक जीवंत प्रकाश ज्योति, एक स्पार्क, एक ऐसा जीवंत अद्भुत संस्पर्श दे कि हमारा जीवन जाग जाए, हम चेतन हैं लेकिन हम चैतन्य भी हो जाएं। ये तत्व गुरु तत्व है जो हमें प्रदीप्त करता है।
0: जी पंडित जी, कहते हैं कि माता और पिता से ज्यादा गुरु के हैं उपकार, शब्द कोश में शब्द न मिलता मानु जो आभार। माता और पिता से बढ़कर भी एक गुरु होता है जो हर इंसान को एक सही राह दिखाता है, सही रास्ते पर चलने के लिए उसका मार्गदर्शन करता है। और क्या क्या जरूरत होती है गुरु की हमारी जिंदगी में?
1: गुरु एक ऐसा सात्विक विचार है
0: जी,
1: जो माता पिता और स्वयं गुरु हमें बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे मौलिक रूप से ये हमारा हित चिंतन करते हैं और उसी तरह हमें बचा लेते हैं जैसे कोई छोटा शिशु अगर दौड़कर सर्प को पकड़ना चाहे या वो जाकर आग में हाथ डालकर अनुभव करना चाहे, तो बिना कुछ कहे भी माता पिता और गुरु बचा लेते हैं, उठा लेते हैं, छिपा लेते हैं और संरक्षित करते हैं। रामचरितमानस में चौपाई आई कि मातु पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार करिय शुभ जानी। इनकी वाणी का विचार नहीं करना है, जो ये कहें उसे शुभ मानकर स्वीकार कर लेना है, और जो कोई ऐसा कर लेते हैं वो भगवान राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं।
0: तो आपने बात की गुरुओं की, तो पंडित जी हमारी परंपराओं में किन्हीं महान गुरुओं के कोई आप संस्मरण हमें सुनाइए।
1: हाँ, ये बहुत ही सुंदर बात है। बहुत प्राचीन काल में हमारे यहाँ आरुणि उद्दालक नाम का एक संस्मरण, एक कथा का हम लोग बार बार श्रवण करते आए हैं
0: जी।
1: उद्दालक गुरु थे और उद्दालक ने आरुणि को कहा कि तुम जाओ, वर्षा ऋतु है और खेत में बांध बांध दो, क्योंकि खेत की मेड़ कमजोर है, जो पानी है वो बह जाएगा। और शिष्य गया, शिष्य ने देखा कि मेड़ टूट जा रही है बार बार और वो पानी खेत से निकल जा रहा है। धान की बोनी है, अगर खेत में पानी नहीं रहेगा तो धान अच्छा नहीं होगा। शिष्य ने बड़े प्रयास किए और भेजा भी इसलिए था क्योंकि ये पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर था और कुछ काम करता नहीं था, केवल उसे सेवा भाव में ही उसका मन लगता था। शिष्य भी अडिक होकर मिट्टी डालता रहा, वो मिट्टी बार बार बह जाती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गुरु आज्ञा का पालन उसने इस रूप में किया कि जहां से बार बार मिट्टी बह रही थी, बहाव बहुत तेज था, वो लेट गया और लेटकर उसने सारा प्रहार अपने सीने पर सहा। पानी की वो तेज तरंगे अपने शरीर से रोक कर वह सारी रात मेड़ पर लेटा रहा। जब सुबह तक शिष्य नहीं लौटा, गुरु व्यग्र हो गए, चिंतित हो गए। वो खेत की ओर आए और उन्होंने देखा कि ये तो काष्ठवत अवचेतन होता हुआ सा मेरा शिष्य लेटा हुआ है। गुरु का संस्पर्श ही मानो शिष्य के जीवन को जीवंत बना देता है। जैसे ही गुरु ने शिष्य को छुआ, मानो शिष्य के शरीर में विद्युत तरंगे दौड़ गईं। वो आनंद से उल्लसित हो गया, उठकर नृत्य करने लगा और उसी दिन ये बात प्रमुखता से आई, स्पर्श मात्रेण सिद्ध्यति। गुरु ने शिष्य को जिस आत्मीय भाव से स्पर्श किया, उसके अंदर ज्ञान का संचार हो गया। अगर कोई भी व्यक्ति गुरु आज्ञा का पालन करता है तो वो मानो गुरु को अपने हृदय में स्थान दे देता है। और वो क्या स्थान देता है, अपितु वो स्वयं गुरु के हृदय में स्थान पा जाता है।
0: बिल्कुल पंडित जी, और ही एक सबसे बड़ा उदाहरण जो हम लोग आम तौर पर देते हैं कि अगर शिष्य बनना है तो एकलव्य जैसा बनिए।
1: बहुत ही सत्य बात है, क्योंकि जो अच्छा शिष्य होता है वस्तुतः वही गुरु बन पाता है। जिसमें शिष्यत्व की अवधारणा हो, जिसमें सीखने की प्रवृत्ति हो, सिखाने की इच्छा हो, वो ही कुछ दे पाता है। जब हम स्वयं के साथ न्याय करना सीख जाते हैं जी, तभी हम किसी और के साथ न्याय कर पाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात कही पंडित जी आपने। पंडित जी, अगर देखा जाए कि कहते हैं जिंदगी में हर एक बच्चे को सबसे पहले उसकी जो गुरु होती है वो माँ होती है, जो बच्चे को पहले चलना सिखाती है, उसे सही गलत की पहचान कराती है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, गुरुओं से मिलता है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा गुरु होता है जो ता उम्र उसे शिक्षित करता है, उसका मार्गदर्शन करता है, तो ऐसे गुरु का परीक्षण किस तरह से किया जाए?
1: हम छोटी छोटी चीज भी कितनी परीक्षा करके लेते हैं, ठोक बजा के लेते हैं। और अगर हमें गुरु बनाना हो जिसके ऊपर हम सहज रूप से समर्पित भाव से रह सकें, ऐसा गुरु चुनना हो तो हमें परिश्रम तो करना होता है। जिसके आने पर, जिसकी निकटता पर हमें स्वयं समाधान आ जाए, उसे गुरु कहते हैं। जब एक बार पक्षियों के राजा गरुड़ के चित्त में अहंकार आ गया कि मैं भगवान विष्णु का वाहन हूं, मैं पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझसे कोई दूजा नहीं है, स्वयं भगवान नारायण मेरी पीठ पर बैठते हैं और मैं उन्हें ले जाता हूं। जब इस प्रकार की गुरूर भरी बातें अपने चित्त में उदित होता हुआ देख गरुड़ ने भगवान के सामने जाकर कुछ कहना चाहा, तो भगवान मन की बात जानते हैं। उन्होंने कहा, गरुड़ तुम जाओ वहां काकभुशुंड के आश्रम में, जो पक्षियों में सबसे नीचा पक्षी कौआ है, वो काकभुशुंड के आश्रम में जाओ, शायद तुम्हारे चित्त को समाधान प्राप्त हो। और गरुड़ उड़े और जैसे ही वो काकभुशुंड के आश्रम के परिवेश में पहुंचे, उनका चित्त शांत हो गया, व्याकुलता तिरोहित हो गई, अहंकार स्वयं नष्ट हो गया, अपने बड़प्पन की वो तूफानी धुंध भरी जो छटा थी, वो गुरु के भगवान की कृपा रूपी तेज बयार बहने से वो बादल तितर बितर हो गए और चित्त में स्वयं समाधान आ गया। कहने का तात्पर्य है कि कोई बड़ा है इसलिए बड़ा नहीं है, उसके निकट आने पर हमारे अंदर समाधान होता है, हमें शुभ शुभ बोलने का मन करता है, हम में सच्चाई के संस्कार पल्लवित होने लगते हैं। वो हमारा गुरु है, वो हमारा इष्ट है, उससे अपने मन की हर बात कहने का मन करता है, वो हमारा आत्मीय, हमारा निकटतम व्यक्ति है, वही हमारा गुरु है जिससे हमें समाधान मिलता है।
0: गुरु की हमने इतनी बातें की, तो अब हम ये भी जान लें कि गुरु पूर्णिमा आखिर मनाई क्यों जाती है। वैसे तो हमें हर दिन ही सुबह उठकर गुरु के चरण छूने चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए, भगवान के साथ साथ गुरु को रोज प्रणाम करना चाहिए। रोज ही मेरे ख्याल से गुरु पूर्णिमा मनानी चाहिए, लेकिन एक खास दिन साल में क्यों?
1: व्यास पूर्णिमा अर्थात भारतीय वाङ्मय को अगर किसी ने समेटा अपने आप में तो महर्षि वेदव्यास ने जी। उन्होंने वेदों का प्रणयन किया, उपनिषदों को संग्रहित किया, उन्होंने बड़ा श्रम साधन कार्य किया। ऐसे जीवंत उपक्रम करने वाले अगर किसी व्यक्ति का नाम है महर्षि वेदव्यास, तो उनके लिए समर्पित यह तिथि है। इस दिन पूर्णिमा होती है अर्थात पूर्ण चंद्र होता है, यह गुरु पूर्णिमा कहलाती है। गुरु पूर्णिमा इसलिए कहलाती है कि महर्षि वेदव्यास जिन्होंने भारतीय वाङ्मय का बहुत बड़ा हिस्सा लिखा, उसे लोगों तक पहुंचाया, उनकी स्मृति और उनके जन्मोत्सव के रूप में महर्षि वेदव्यास को समर्पित यह पूर्ण चंद्र का दिवस पूर्णिमा तिथि मनाई जाती है। और इस दिन गुरु पूजन करने से गुरु की कृपा हमें प्राप्त होती है।
0: पंडित जी, एक अच्छा गुरु तो हमें मिल जाता है, लेकिन उस गुरु से ज्ञान किस तरह से प्राप्त किया जाए, वो शिष्य में भी उतनी क्षमता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक बात है, ये परस्पर भाव की बात है। जैसे हम शिष्य ढूंढते हैं, वैसे गुरु भी शिष्यों को ढूंढते हैं और शिष्य भी गुरुओं को ढूंढते हैं
0: जी।
1: परस्पर भावयंतो, ये परस्पर भाव है। रामचरितमानस में गुरु को प्रसन्न करने के लिए या गुरु तत्व को प्राप्त करने के लिए इन दो चौपाइयों का बड़ा महत्व है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि संकर सम होई। और दूसरी पंक्ति है कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। इन दो पंक्तियों के बार बार श्रवण मनन और वाचन करने से गुरु तत्वों में प्रीति होती है। वस्तुतः रामचरितमानस का प्रारंभ ही गुरु की पूजा से होता है। बंदों गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। शिष्य कहता है कि गुरुजी, आपके ये दोनों चरण चरण नहीं कमल हैं, और इन जो चरणों में धूल लगी हुई है ये धूल नहीं है, ये कमल के पराग हैं, और जो इससे गंध आ रही है ये गंध और कुछ नहीं, हमारे जीवन को पवित्र बना देने वाली सुगंध है। भावना की बात है, हम गुरु के चरणों को कमल माने, उसमें लगी हुई धूल को पराग माने, और अपने हृदय को अगर दर्पण मानकर उसमें गुरु के चरण रज का अगर हम लेप करेंगे तो दर्पण निर्मल हो जाएगा, क्योंकि शीशा तभी साफ होता है, वो धूल से साफ होता है, वो पराग से साफ होता है। जितना गहरा समर्पण होगा उतनी पूर्णता होगी।
0: बहुत ही अच्छी व्याख्या की गई है गुरु की। पंडित जी, ये बताइए कि गुरु के ज्ञान के द्वारा अज्ञान और द्वंद्व को कैसे नष्ट किया जा सकता है?
1: ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। तात्पर्य यह है कि जहां भी द्वंद्व है वहां समर्पण नहीं हो सकता। जब हम द्वंद्वातीत होते हैं, जब दो से परे होते हैं, समाहित चित्त होते हैं, तब हम पूर्ण समर्पण कर पाते हैं और तभी गुरु की कृपा मिलती है। उघर ही बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। अगर ये संसार में कहीं दुख है तो वो अपनी अज्ञानता में है
0: जी।
1: इस संसार का निर्माण अगर परमात्मा ने किया है और परमात्मा सर्वशुद्ध हैं, विशुद्ध हैं, निर्मल चित्त हैं, सबके हितकारी हैं, तो वो इस संसार को गलत कैसे रच सकते हैं। चाहे चारों दिशाएं हों, चाहे सभी रंग हों, इन किन्हीं भी चीजों में अगर हम दोष देखते हैं तो वस्तुतः ये प्रकृति का नहीं, स्वयं अपने ही अज्ञान का दोष है। हम अपने अज्ञान को किसी पर आरोपित नहीं कर सकते। जो ज्ञान है वही मुक्ति का कारक है। रिते ज्ञानान न मुक्ति ही। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी, और ज्ञान हमें गुरुओं से प्राप्त होगा, और गुरु इस जगत में ईश्वर के ही स्वरूप में अधिष्ठित हैं, जो सर्वात्मना हमारा हित चिंतन करते हैं। जितना गहरा समर्पण उतनी ऊंची उड़ान।
0: पंडित जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, क्या उनके भी कोई गुरु थे?
1: ये एकदम सच बात है। कभी एक बार महात्मा गांधी अपनी कुटिया में अंदर तैयार हो रहे थे, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरे विश्व के बहुत बड़े बड़े पत्रकार अपने विविध सामग्रियों सहित उनका साक्षात्कार लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। पता चला महात्मा गांधी स्नान करके और ध्यान साधन पूजन कर रहे हैं। बाहर वे पत्रकार प्रतीक्षा करते रहे, और जब कुछ देर होने के अनंतर महात्मा गांधी बाहर निकले तो उसमें से एक पत्रकार ने पूछा था, महात्मा पूरा विश्व आपके एक एक मिनट और आपके द्वारा कही गई एक एक बात से कितना जीवंत हो उठता है, उसका कितना महत्व है, और आप कहते हैं पूजा में बैठकर ये काफी समय आपने नष्ट कर दिया, क्या इसका यूटिलाइजेशन, इसका उपयोग नहीं और हो सकता था इस राष्ट्र को दिशा देने में? महात्मा गांधी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जो मैं बोलता हूं और जिस बात से पूरा विश्व आंदोलित हो उठता है, वो बात मैं कैसे बोलता हूं, वो ऊर्जा मैं कहां से लेता हूं, ये वही ऊर्जा काल था जब मैं राम राम ऐसे दिव्य शब्द का उच्चारण करते हुए अपने शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा का स्मरण करता हूं, और जो ऊर्जा संग्रहित होती है उससे ही विश्व का एक उन्मेष होता है।
0: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में आपने बताया, और पंडित जी, हमारा भारत देश पूरे विश्व में अपनी संस्कृति के लिए महान माना जाता है, प्रचलित है, हमारी परंपराएं जो रही हैं आज तक, क्या भारत देश की ये महानता गुरुओं से भी रही है?
1: बिल्कुल, हमारी गुरु परंपरा विश्व में ख्यात है
0: जी।
1: और हमारी एक गुरु परंपरा है जो भगवान नारायण से प्रारंभ है। नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौडपदं महांतं गोविंद योगींद्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादंच हस्ता मलकंच शिष्यम तम त्रोटकम वार्तिककारमन्यान अस्मद् गुरुं संततमानतोस्मि। ये परंपरा है जो भगवान नारायण से प्रारंभ होकर पद्मभव वशिष्ठ शक्ति पराशर व्यास शुक गौडपाद और गोविंद योगींद्र शंकराचार्य और उनके चार शिष्य, और इस तरह वो प्राचीन परंपरा आज भी जीवंत है
0: जी।
1: जो ज्ञान तत्व के रूप में उद्भासित होती है।
0: तो पंडित जी, ये हमने जाना कि शास्त्रार्थ और हमारी पुरानी परंपरा के अनुसार गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है, लेकिन आज के अगर आधुनिक युग में हम देखें, कंप्यूटर का युग जिसे कहा जाता है, तो इस युग में हमें कितनी ज़रूरत है गुरु की, कि आज जो पूरा एक जीवन की जो शैली है वो ही पूरी बदल चुकी है। आज बच्चे अपने पेरेंट्स की भी बहुत कम सुनते हैं, तो गुरु किस तरह से उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं और कितनी ज़रूरत है?
1: ये बहुत ही आवश्यक बात है। आज हम जिस दुराहे पर खड़े हुए हैं या जिस स्थान पर हैं, हम त्रिशंकु की भूमिका में हैं। न हम स्वर्ग में हैं, न हम धरती पर हैं, क्योंकि हमारे जीवन से वो श्रद्धास्पद बिंदु निकल गए हैं। अब हमारे जीवन में श्रद्धा का अभाव देखा जा रहा है। हम किसी के बारे में श्रद्धावनत नहीं हैं, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, या कार्यालय में हमारा अधिकारी हो, या हम जिसके साथ काम करते हो। हम जितना श्रद्धा विहीन होंगे, हम जितने श्रद्धा से दूर होंगे, उतना ही हमारे अंदर अधूरापन आएगा। और जितने ही हम श्रद्धा और समर्पण की ओर झुकेंगे, उतना ही हमारा जीवन पूर्ण होगा। आज हम कहते हैं कि वो बड़ा गुरु है
0: जी।
1: दरअसल ये व्यंग और व्यंजना की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने क्षेत्र में महारत हासिल करता है, तो उसकी साधना का परिणाम है, और वो साधना ही गुरुत्व प्रदान करती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, अगर वो भली प्रकार अच्छी तरह से कर पाता है, तो वो उस चीज का मास्टर है, गुरु है
0: जी।
1: और स्वयं मास्टर होना एक बात है, लेकिन उसके संपर्क पे आने वाला हर व्यक्ति अगर गुरु हो जाए, मास्टर हो जाए
0: जी,
1: तो फिर वो गुरु है।
0: और कुछ बातें आप पंडित जी बताना चाहेंगे गुरु महिमा से जुड़ी?
1: बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही। एक बार सूरदास जी से किसी ने कहा कि सूरदास जी, आप भगवान को देख नहीं पाते, और रोज आप ये मथुरा के पास गांव के हैं, और वृंदावन में आप बांके बिहारी जी के मंदिर तक आते हैं। धूप हो, बरसात हो, चाहे जो ऋतु हो, लेकिन ये आपके नित्य का उपक्रम है कि आप आते हैं। तो लोगों ने कहा, आप क्यों आते हैं, आप तो सूरदास हैं, आपको तो भगवान दिखते नहीं हैं। तो सूरदास जी ने मुस्कुराकर यही कहा था कि मैं कन्हैया को नहीं देख पाता, लेकिन कन्हैया तो मुझे देख पाता है ना, मैं रोज आता हूं यहाँ। हम अपने प्रति सच्चे हों, परमात्मा का दुलार मिलेगा। कभी कोई दो आदमी मंदिर के पुजारी थे, और कहते हैं कि भगवान ने आकाशवाणी की कि मैं तुम दोनों की पूजा से बहुत अप्रसन्न हूं, क्योंकि तुम पिछले 16 सालों से यहां पूजा तो कर रहे हो, लेकिन बहुत सारी दक्षिणा के लोभ में भी रहते हो, मैं तुमसे अप्रसन्न हूं
0: जी।
1: एक पुजारी नृत्य करने लगा था, नाचने लगा था कि अरे, भगवान को पता है कि हम 16 सालों से पूजा कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई अबोध, अकिंचन या अज्ञानी अपने साधनों और अपने चिंतन से वो प्रयास करता है, लेकिन यदि कोई ज्ञानी, महापुरुष, देवत्व अथवा ईश्वरत्व के चित्त में उसके प्रति कोई स्थान है, तो वो महत्वपूर्ण बात है। हम जितने निर्मल होंगे, जितने समर्पित भाव से रहेंगे, या अपने कर्म के प्रति जितने सावधान रहेंगे, वही हमारी पूजा है, वही ज्ञान निधि है, और वही मोक्ष का द्वार है।
0: पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर गुरु महिमा का बखान किया, हमारे श्रोताओं को बताया गुरु की महिमा के बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान न मिलता, मिलता नहीं सम्मान, अज्ञानी भी ज्ञानी बनता, गुरु विद्या की खान। इसी के साथ कंचन आपसे आज्ञा लेना चाहती है। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, रेडियो फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है विश्व बाघ दिवस पर हमारा खास कार्यक्रम सिमटते जंगलों में बढ़ता बाघों का कुनबा। शहरों, कस्बों, गांवों और बस्ती की आबादी घनी और घनी होती जा रही है और दिनों दिन कम होते जा रहे हैं जंगल। हमारी सरकारें इस बात से चिंतित भी हैं और लगातार जमीन, जंगल और जानवरों को बचाने के अपनी ओर से हर संभव प्रयास भी कर रही हैं।
2: लेकिन ये कोशिशें नाकाफी हैं क्योंकि जंगल मर रहे हैं और लगातार मजबूत होती जा रही है इंसानी ताकत। अब आप कहेंगे कैसे, तो इस बात की गवाही देती हैं हमारी मानव सभ्यता को आगे ले जा रही और सीना ताने खड़ी ये ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें। शहरों में तेजी से विकसित हो रहे मशीनी जाल, कारखानों से निकलता शोर और वायुमंडलों का दम घोटते धूल धुएं के गुबार, आसमान को अपनी रेडिएशन की जद में समेटते जा रहे मोबाइल वाईफाई के नेटवर्क, इन टेलीकॉम टावर्स की बेतरतीब बेहिसाब बढ़ोतरी आसमान से पंछियों को भी निगलती जा रही है। लेकिन हमें हर तरफ दिखाई देता है विकास, विकास और विकास। लेकिन क्या आप जानते हैं ये विकास बस कॉन्क्रीटी विकास है?
1: क्योंकि आज इंसान अपनी आधुनिकता का दिन रात जश्न मना रहा है। इन पहाड़ों, जंगलों, यहाँ तक कि नदियों को मोड़ तोड़ कर या काट कर बनाई सड़कों और पटरियों पर दौड़ती अंधाधुंध मोटरगाड़ियों, रेलगाड़ियों को देखकर खुश होता है। आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देखना अपनी शान समझता है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आसमान में उड़ने वाले खूबसूरत पंछी लगातार आसमां से नदारद होते जा रहे हैं।
2: आज हमारे आसपास हरियाली कम ही दिखाई देती है, जंगल का क्षेत्रफल सिमटता जा रहा है और चारों ओर बस जो दिखाई देता है वो है लगातार हर जद तक फैल रहा कॉन्क्रीटी अंबार।
1: इन सबके बीच अब एक सवाल आता है कि क्या हमसे कुछ छूट रहा है? क्या कुछ ऐसा है जिसे हम भूलते जा रहे हैं? क्या कोई ऐसा जीवन है जिसका हम दमन करके, जिसको नष्ट करके हम अपनी सभ्यता का पालन पोषण कर रहे हैं? कुछ ऐसा जिसको आने वाले भविष्य में हमारी भावी पीढ़ियां सिर्फ किताबों, कहानियों में पढ़ेगी और जानेगी? क्या वाकई जिसे हम पीछे छोड़ रहे हैं या जिनके जीवन के नष्ट होने का कारण हम बन रहे हैं, उनके बिना मानव सभ्यता के भविष्य की कल्पना भी संभव है?
2: तो हाँ, हम लगातार कुदरत का दमन कर रहे हैं, हम नष्ट कर रहे हैं जंगल के जीवन को, कुदरत की उन बेशकीमती नियमतों को जिन्हें हम चाहकर भी दोबारा कभी लौटा नहीं पाएंगे। और कुदरत की उन्हीं बेशकीमती नियमतों में से एक है बाघ, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। जंगलों में लगातार बढ़ रहे इंसानी दखल से दिनों दिन कम होती जा रही इस प्रजाति की सुरक्षा और इनके कुनबे को बढ़ाने की दिशा में दुनिया भर की एजेंसियां, सरकारें और संगठन कई वर्षों से दिन रात प्रयास कर रहे हैं। कोशिशें की जा रही हैं वन्य जीवों को उनका हक लौटाने की। इसी के साथ प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए हैं
1: और प्रोजेक्ट की सफलता सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए और उन तमाम सरकारों, संगठनों और एजेंसियों के लिए गर्व का विषय है जिन्होंने इस दिशा में लगातार प्रयास किए हैं और आज भी बाघों के जीवन को बचाने और इस मुहिम को नित नई सफलता दिलाने की दिशा में अपना प्रशंसनीय योगदान दे रहे हैं और इस प्रोजेक्ट टाइगर मिशन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं।
2: कई देशों के द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए मुहिम चलाने के बावजूद कुछ दशक पहले तक बाघों की घटती आबादी चिंता का विषय थी और कई पर्यावरणविदों का मानना था कि यदि बाघों की संख्या घटने की रफ्तार नहीं रुकी तो आने वाले कुछ दशकों में बाघों का नामो निशान भी धरती से मिट जाएगा। कारण, मानव सभ्यता का अत्याधुनिकीकरण और दूसरी ओर इनका अपने लोभ के या मनोरंजन के लिए किया जा रहा शिकार।
1: बाघों की संख्या में गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उनकी विलुप्त होने की चिंताजनक स्थिति से निपटने और बाघ संरक्षण के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर शिखर सम्मेलन के दौरान 29 जुलाई को हर साल विश्व बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस साल यानी 29 जुलाई 2023 को हम 13वां विश्व बाघ दिवस मनाने जा रहे हैं। आज इस पहल की बदौलत दुनिया भर में, खासकर भारत में, बाघों की जनदर बढ़ने से परिस्थिति बदलने लगी है। विभिन्न सरकारों की पहल से शुरू किया गया बाघ संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर सफलता के नए आयाम छूने लगा है। बाघों को बचाना इस मायने में भी हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय वन्य पशु जीव प्राधिकरण द्वारा 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। दरअसल वैश्विक बाघ दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कहा जाता है, ये बाघ संरक्षण के लिए जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए आयोजित एक वार्षिक उत्सव ही है जो हर साल 29 जुलाई को आयोजित किया जाता है।
2: जंगल में बाघ होने का मतलब है जंगल का अच्छा स्वास्थ्य और शाकाहारी वन्य प्राणियों की प्रचुर उपलब्धता। जहां जंगल अच्छा होगा वहां बाघ होगा और भोजन श्रृंखला के व्यवहार से बाघ और जंगल की स्थिति का पता चलता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यदि इस तरह लगातार जंगल खत्म होते रहे तो बाघों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। जंगलों के कटान और अवैध शिकार के कारण लगातार कम हो रही बाघों की संख्या चिंता का विषय है। इसलिए बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ इनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए भी विश्व बाघ दिवस मनाने का निर्णय एक सही निर्णय है, ये कहना उचित होगा।
1: श्रोताओं, अब बाघ से संबंधित तथ्यों की बात करें तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है और ये पैंथेरा जीनस का सदस्य है। बाघ दलदली अंधेरी भूमि पर रहना पसंद करते हैं। इनकी मौजूदगी साइबेरिया समशीतोष्ण जंगलों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीपीय और सुमात्रा के उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जंगलों तक फैली है।
2: क्या बिल्ली को देखकर कभी आप डरे हैं? नहीं तो एक बार बिल्ली के करीब जाने से पहले भी जरूर सोचिएगा, क्योंकि बिल्ली कोई आम जानवर नहीं, बाघ की ही मौसी है। कहने का आशय, बाघ बिल्ली की ही सबसे बड़ी प्रजाति है।
1: और बाघों की 8 उप प्रजातियों को मान्यता भी दी गई है, जिनमें से 3 हालांकि विलुप्त हो चुकी हैं। और वो प्रजातियां कौन सी हैं? आइए जानते हैं।
2: बंगाल टाइगर्स, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर पाया जाता है। कैस्पियन बाघ, जो मध्य और पश्चिम एशिया के माध्यम से तुर्की में पाया जाता था पर अब ये विलुप्त है।
1: अमूर बाघ, जो रूस और चीन के अमूर नदी क्षेत्र में और उत्तर कोरिया में पाया जाता है। जावन बाघ भी विलुप्त बाघ की प्रजाति है, जो इंडोनेशिया के जावा में पाया जाता था।
2: दक्षिण चीन बाघ नाम से ही पता चलता है ये दक्षिण मध्य चीन में पाया जाता है। पहली 2 विलुप्त प्रजातियों की तरह ही बाली बाघ भी विलुप्त है, जो इंडोनेशिया बाली में पाया जाता था।
1: सुमात्रन बाघ इंडोनेशिया सुमात्रा के महाद्वीपों में पाया जाता है। सन 1998 में इसे एक विशिष्ट उप प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। भारत चीनी बाघ महाद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है।
2: यदि भारतीय टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो हमारे भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है, जिसमे नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जबकि महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है।
1: श्रोताओं, बाघ एक अनूठा पशु है जो किसी स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र और उसकी विविधता में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च उपभोक्ता है, या ये कहें कि ये खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर है और एक ऐसा जंगली स्तनपाई जो आबादी को नियंत्रण में रखता है। अब जरा सोचिए, यदि हमारी खाद्य श्रृंखला का शीर्ष उपभोक्ता ही लुप्त हो जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होगा? धरती पर मौजूद जीवों का जीवन परिवर्तित हो जाएगा, या हो सकता है कि उनका अस्तित्व ही संकट में आ जाए। अतः जरूरी है हर नागरिक प्रकृति की सुरक्षा के प्रति सजग और जिम्मेदार बने।
2: और जब बात चल ही रही है तो चलिए बाघों के बारे में कुछ और रोचक तथ्यों से आपको अवगत कराते हैं। बाघ एक बेहद तेज तर्रार, खूबसूरत और मांसाहारी जंगली पशु है। इसका औसत जीवन काल तकरीबन 40 वर्ष तक होता है। बाघ अन्य जंगली पशुओं की तरह शिकार करके ही अपना भोजन करना पसंद करता है। ये ज्यादातर घने जंगल में रहना पसंद करता है। बाघ एक रात में 27 किलो तक मांस का भक्षण कर सकता है। बाघों की प्रजाति में अन्य प्रजातियों की अपेक्षा साइबेरियन टाइगर प्रजाति का बाघ सबसे बड़ा मांसाहारी पशु है। बाघ अपने शिकार की गर्दन मरोड़कर या तोड़कर उसका शिकार करता है।
1: मादा बाघ का गर्भाधारण काल 3.5 माह का होता है और वो एक बार के गर्भ से 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। जन्म के बाद शावकों की आंखें 3 से 4 सप्ताह के बाद खुलती हैं, पर सारे शावक जीवन के संघर्ष से जीत नहीं पाते और कुछ ही शावक जिंदा रह पाते हैं। बाघ के शावक 6 माह की उम्र से शिकार करने का हुनर अपनी माँ से ही सीखते हैं। शिकार के बाद मादा बाघ सबसे पहले अपने बच्चों को शिकार को खाने देती है, बाद में खुद उस शिकार का भक्षण करती है। शेरों या अन्य जंगली मांसाहारी पशुओं की अपेक्षा बाघ शिकार को मारने के बाद उसे खाने के लिए आपस में झगड़ा नहीं करते, बल्कि भोजन के लिए अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं।

0: शिकार के वक्त हमेशा अपने शिकार के पिछले हिस्से पर ही वार करते हैं, लेकिन अपने शिकार के लिए किए जा रहे 10 प्रयासों में से ये केवल एक ही प्रयास में सफल हो पाते हैं। ये अपने गद्देदार पंजों की वजह से दबे पैर बिना किसी आहट के अपने शिकार पर हमला करते हैं।
1: नर बाघ अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनका अपना एक क्षेत्र होता है। वो लगातार अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए दूसरे बाघों से संघर्ष करते हैं। कई बार आपसी संघर्ष से ये घायल भी हो जाते हैं या इनकी मृत्यु तक हो जाती है। ये अपने क्षेत्र को चिन्हित कर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पेड़ों पर अपने पंजों के निशान बना देते हैं या पेड़ों पर अपनी सुगंध छोड़ देते हैं। इनकी अपनी एक अलग गंध होती है और उस गंध या चिन्ह से अन्य बाघ उनके क्षेत्र से दूर ही रहते हैं।
0: अब आप कहेंगे, भला ऐसे कैसे संभव है? तो मैं आपको बता दूं कि हर जीव को बनाने के लिए प्रकृति की अपनी अनूठी कलाकारी है। जिस तरह हर इंसान की उंगलियों की छाप या फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही बाघों के शरीर की धारियां हर बाघ पर अलग होती हैं। किसी अन्य बाघ से मेल नहीं खाती। बाघ की गर्जन 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है और तो और इनको तैराकी में भी महारत हासिल होती है। ये पानी में आसानी से लंबी दूरी तैर कर पार कर लेता है।
1: बाघों का अधिकतर शिकार इसकी खाल, पंजों, दांतों के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी काला बाजारी भी की जाती है। बाघों के अंगों की कीमत सोने के भाव से भी कई गुना कीमती होती है। इसके अस्तित्व की बात की जाए तो अब तक का मिला सबसे पुराना बाघ जीवाश्म 2 मिलियन वर्ष पुराना है।
0: है ना ये रोचक तथ्य? हो सकता है इनमें से कई तथ्यों से आप पहले से परिचित हों। खैर, अब बात बाघ संरक्षण के उद्देश्य की, जो कि मात्र इस खूबसूरत जानवर को बचाना नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व और भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका जीवन इस बात को सुनिश्चित करने में सहयोगी है कि हम अधिक समय तक जीवित रहें, क्योंकि संरक्षण के परिणाम स्वरूप ही हमें स्वच्छ हवा, पानी, परागण, सही तापमान, विनिमय आदि जैसी पारिस्थितिक सेवाएं प्रकृति से प्राप्त होती रहेंगी।
1: अब आप पूछेंगे कि यदि पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये इतना जरूरी है, तो इसके संरक्षण के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं? तो हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक प्रायोजित योजना शुरू की गई। ये योजना देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करती है।
0: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है और इसको साल 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था।
1: कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स यानी CATS ये विभिन्न मापदंडों का एक सेट है जो बाघ से जुड़े स्थलों को जांचने का मौका देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा।
0: 2023 में भारत में बाघ जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में 200 बाघ बढ़े हैं और 3,167 हो गए हैं। ये वैश्विक गिनती का 3/4 है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने बाघ जनगणना पर स्टेट्स ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट जारी की है। आपको बता दें कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद से ही दुनिया में बाघों की आबादी में तेजी से गिरावट देखी गई थी, जबकि इतिहास में पहली बार है जब बाघों की संख्या में वर्तमान में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है।
1: वर्तमान में विश्व के बाघों की आबादी का 70% सिर्फ भारत में है। साल 2006 से 2018 के बीच मध्य देश में बाघों की संख्या में 6% की वृद्धि देखी गई और आज 2023 में बाघों की संख्या तेजी से इजाफा कर रही है और अब भारत में बाघों की कुल संख्या 3,167 हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के जिम कार्बेट बाघ अभ्यारण्य में देश में सबसे अधिक बाघों की आबादी पाई गई। वहीं बाघों की संख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर कर्नाटक का नागरहोल टाइगर रिजर्व, तीसरे स्थान पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, साथ ही कांजीरंगा टाइगर रिजर्व है। सबसे अधिक बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश का नंबर वन प्रदेश है। यहां बाघों की संख्या देश के अन्य प्रदेशों से अधिक है। वहीं दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड, चौथे और पांचवे पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु है।
0: अब आप कहेंगे कि क्या लाभ इतनी सारी बाघ संरक्षण की योजनाओं का, तो जरा गौर फरमाइए। बाघ संरक्षण की परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों के पारिस्थितिक तंत्र जैसे स्वच्छ जल, भूमि उर्वरता में सुधार देखने को मिले। बाघों की संख्या में वृद्धि से, टाइगर रिजर्वों के बेहतर प्रबंधन से पर्यावरण पर्यटन में इजाफा हुआ और इससे उन लोगों को रोजगार मिला जिनकी पारंपरिक आजीविका संरक्षण परियोजना से प्रभावित हुई थी।
1: और इतना ही नहीं, संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्वों में वृक्षों की संख्या में वृद्धि से पर्यावरण में उत्सर्जित कार्बन में भी कमी दर्ज की गई। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। दरअसल प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा साल 1973 में की गई थी। देश के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी कैलाश सांखला को इस कार्यक्रम का पहला निदेशक भी नियुक्त किया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम के तहत बाघ आबादी वाले राज्यों को बाघों के संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता भी मुहैया कराई जाती है।
0: हम आपको बता दें कि जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था, उस वक्त देश में केवल 9 टाइगर रिजर्व थे। फिर इनकी संख्या में बढ़त होती रही और आज देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। लेकिन बाघों की सुरक्षा की राह इतनी भी आसान नहीं रही है। प्रोजेक्ट टाइगर संरक्षण से जुड़े संबंधितों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उनमें से अवैध शिकार और मानव प्रकृति के बीच का संघर्ष प्रमुख है। दरअसल बाघों का शिकार शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता रहा है। साथ ही बाघों के अंगों का ऊंचे दामों पर व्यवसाय भी बाघों के शिकार की मुख्य वजह रही है। इसके अलावा लगातार मानव जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास, अंधाधुंध जंगलों की कटाई, शहरीकरण और मानवों का बाघों के क्षेत्र में बेरोक टोक कब्जा भी कई चुनौतियां बाघों के संरक्षण के कार्य में बाधा बनता आ रहा है, जिससे बेखौफ वनों में विचरण करने वाले इस जीव को छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रहना पड़ता है।
1: अगर परिस्थिति बदलने की दिशा में लगातार प्रयास न किए गए तो जितनी तेजी से बाघों की संख्या बढ़ रही है, निकट भविष्य में उनकी पुनः कमी का नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। इसीलिए देश में बाघ आबादी के संरक्षण और सुरक्षा के लिए टाइगर रिजर्वों को आपस में जोड़ने के लिए आरक्षित बाघ गलियारों का निर्माण या सड़क और रेल परियोजनाओं के लिए भूमिगत मार्गों का विकल्प अपनाना चाहिए। वन्य क्षेत्रों के निकट किसी भी तरह के औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत के पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के अलावा भी अन्य पहलुओं पर व्यापक जांच की जानी चाहिए।
0: बाघों के संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय रहवासियों का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए जरूरी है कि बाघ संरक्षण योजनाओं से प्रभावित आवासीय स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण या अन्य कारण से अगर किसी की आजीविका प्रभावित होती है तो उन लोगों और समुदायों को उचित मुआवजे और रोजगार उपलब्ध कराने के विकल्प खोजने चाहिए, जिससे व्यक्तियों की वनों पर निर्भरता कम हो सके।
1: और निरंतर बदल रहे प्राकृतिक परिवर्तनों को देखते हुए भी बाघ संरक्षण की परियोजनाओं में निकट भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी बदलाव करते रहना चाहिए। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज के हमारे बाघ संरक्षण के इस विशेष कार्यक्रम सिमटते जंगलों में बढ़ता बाघों का कुनबा को हम यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि इस बाघ दिवस पर आप संकल्प लेंगे प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाकर और हमारे पारिस्थितिक तंत्र को समान बनाए रखने के प्रयासों में जन जागरूक नागरिकता की भूमिका निभाएंगे। तो अब मुझे यानी स्वाति को
0: और मुझे यानी संदीप को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।